मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 22 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दोस्तों, सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। नमस्ते लखनऊ की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। श्रोताओं, इस प्यारी सी सुबह में कहीं मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं, कहीं चाय की प्यालियों से उठती भाप दिन की शुरुआत का एहसास करा रही है, और आज तो रिमझिम फुहारों ने भी समा बांध दिया है। वास्तव में सुबह का ये समय केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि अपने सपनों को फिर से जीवन में भरने का संदेश देता है। तो चलिए हम भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को है और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया।

0: ही ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं और श्रोताओं, ये समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। कार्यक्रम में आज भेंटवार्ता सुनिए, खरीफ में सह फसली खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शशांक शेखर सिंह। आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं। खरीफ में जहां सफसली खेती करना चाहते हैं, वैसे तो आप फर्दा खेती करते हैं, लेकिन किसी मुख्य फसल के साथ कोई सफसल उगाना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र अम्बेडकर नगर से वैज्ञानिक डॉक्टर शशांक शेखर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खरीफ में सफसली खेती की क्या कुछ संभावना है?
3: जी, खरीफ में किसानों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि उनको सफसली खेती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर मौसम और कीट बीमारियां, ऐसे बहुत से हमारी समस्याएं हैं जिसके कारण कि कोई हमारी मुख्य फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी सफसल साथ में रहेगी तो वो अच्छा इनकम हमको दे सकती है और नुकसान से हमको, किसान को वो बचा सकती है। खरीफ में हमारी एक अरहर मुख्य फसल होती है, तो हम ज़्यादा जोर अरहर के साथ जो दूसरी फसलों को लिया जा सकता है उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे।
2: कौन कौन सी फसलें हैं जिसको अरहर के साथ सब फसल के रूप में ले सकते हैं?
3: जैसे अरहर के साथ हम मक्का ले सकते हैं, अरहर के साथ उर्द मूंग ले सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं अरहर के साथ, और एक बुंदेलखंड या जो हमारे थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र हैं
2: जी,
3: वहाँ पे मूंगफली के साथ हम बाजरा ले सकते हैं।
2: तो शुरुआत करें कि जहाँ अरहर के साथ मक्का उगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो कौन कौन सी खास बातें हैं?
3: पहले प्रजाति के चयन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।
2: हाँ।
3: प्रजाति हमें ऐसी रखनी चाहिए जो कि ज़्यादा उत्पादक हो, जैसे हमारी बहार है, नरेंद्र अरहर एक है, और उसी तरह से मक्का में प्रयास करना चाहिए कि जैसे जौनपुरी सफ़ेद है मक्का, जो हाइब्रिड को अवॉइड करना चाहिए,
2: यानी देसी हो या संकुल मक्का।
3: संकुल मक्का ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 जुलाई तक हम इन फसलों की बुआई कर दें। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होती है, लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी
2: जी।
3: तो हम अरहर में लाइन से लाइन की दूरी जो है 90 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर, मतलब
2: लगभग 3 फीट।
3: हाँ, 3 फीट, मतलब हाँ। एक लाइन से दूसरी लाइन जो है वो हम 3 फीट के रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो हम 25 सेंटीमीटर करीब रखेंगे।
2: और अरहर की दो लाइनों के बीच
3: और दो लाइनों के बीच में हम जो है मक्के की एक लाइन हम डाल देंगे, जिसमें पौधे की पौधे दूरी जो है 20 सेंटीमीटर हमको रखना है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, जहां अरहर के साथ उर्द मूंग या तिल उगाना है वहां?
3: इसमें एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा
2: जी,
3: सभी फसलों के लिए, जैसे अरहर मक्का है या अरहर उर्द हम कर रहे हैं, अरहर तिल कर रहे हैं, एक खरपतवार हमारे बहुत बड़ी समस्या रहती है खरीफ की फसलों में
2: जी।
3: तो खरीफ की फसलों में अगर रासायनिक नियंत्रण किसान करना चाह रहा है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा वीट कंट्रोल के लिए है पेंडीमेथिलीन।
2: अच्छा, खरपतवार नाशक।
3: खरपतवार नाशक पेंडीमेथिलीन की 3.3 लीटर की मात्रा हम 1 हेक्टेयर के लिए संस्तुत करते हैं।
2: अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 1.25 लीटर।
3: लगभग 1.25 लीटर के आसपास जी जी, 1 एकड़ में।
2: तो ये बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें?
3: हाँ, इस ये थोड़ा सा तकनीकी चीज है जिसको मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी बार आप ये रसायन खरीद तो लेते हैं लेकिन प्रयोग करने की जानकारी सही न होने से उसका फायदा नहीं मिलता या नुकसान उठाना पड़ता है। पेंडीमेथिलीन को स्प्रे करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसको सदा जो है कट नाजिल से ही स्प्रे करना चाहिए
2: जी।
3: अक्सर किसान जो है जो नाजिल यूज करते हैं दवा खरीदने के लिए, जिसको कोन नाजिल बोलते हैं, जिसमें फुहारा बनता है, उस नाजिल से पेंडीमेथिलीन को कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए
2: जी।
3: कट नाजिल से स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, आगे से पीछे की तरफ स्प्रे करते हुए आना चाहिए
2: जी।
3: उसमें होता क्या है कि ये एक लेयर बना लेती है। और तीसरी क्या ध्यान देना है कि किसी भी स्थिति में 48 घंटे के अंदर इस रसायन का स्प्रे कर देना है, नहीं तो ये फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है देर करने पे।
2: डॉक्टर साहब,

0: किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में फसली खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी किसान भाइयों, मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 94-15-16-57-58, 94-15-16-57-58, 94-15-16-57-58।
0: डॉक्टर शशांक शेखर सिंह साहब आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में फसली खेती कैसे करें किसान भाई बहन इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ में सह फसली खेती कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शशांक शेखर सिंह। आपसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। आइए सुने आज का सुविचार, हंसने की कला।
3: प्रसन्नता जीवन का अद्भुत सौंदर्य है। अंतःकरण की स्थिति का दूसरा नाम प्रसन्नता है। यह चित्त हल्का करने का सात्विक भाव है। निश्चल और सरलता इसका प्रथम उपाय है। तत्काल आनंद देने के अलावा यह आयु और कीर्ति बढ़ाती है। प्रसन्नता आंतरिक संवेदना है। शरीर और मन के लिए प्रसन्नता स्वास्थ्यवर्धक और मित्र तुल्य है। यह बुद्धिमत्ता बढ़ाती है। प्रसन्नता प्राप्त करना अपने वश में है, इसके लिए बार बार सद प्रयास करना पड़ता है। ऐसा न करने पर प्रसन्नता के स्थान पर तनाव बढ़ने लगता है। आंतरिक प्रसन्नता सुखी बनाती है। बड़े दुख को छोटी प्रसन्नता कम करती है। आवश्यकताएं कम करना प्रसन्नता के लिए वरदान है। इसके रसायन में संघर्ष की सफलता का रहस्य छिपा रहता है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय है कि कुछ समय के लिए बालक बन जाएं। सरल चित्र आनंदमय स्वभाव वाले भगवान स्वरूप बच्चों के साथ तन्मयता में खेलकर आनंद का अनुभव करें। गीत भक्ति रस के संगीत प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चेतना के विकास में एक विशेष गुण जो मनुष्य को पशु से ऊपर सिद्ध करता है वह है मनुष्य की हंसी। खिलखिलाकर हंसने का वरदान प्रकृति में मनुष्य को मिला है। यह चेतना की एक विलक्षण अवस्था है। दूसरों पर हंसना पीड़ादायक है, स्वयं पर हंसना आत्मबोध। हंसी गंभीरता और मूर्खता का विलोम है। जैन धर्म का जन्म ही हंसी से हुआ। एक निश्चल निर्मल हंसी प्रज्ञा और आत्मचेतना का सबसे प्रखर रूप है। हंसी से तनाव भागता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हंसी को उत्सव ही बना दिया। कृतज्ञता परोपकार और करुणा के बिना प्रसन्नता की हंसी नहीं आती। आंखें मिलाकर प्रसन्नता मिलती है। सच्ची हंसी की भाषा आह्लाद के व्याकरण से जन्म लेती है। हंसने के समय मनुष्य देवता हो जाता है। यह दुर्लभ संयोग दैवी गुणों के विकास से आता है। किसी के गुण की प्रशंसा करना, परोपकार करना और हंसने के भाव में विचार महान बनते हैं। हंसने की कला नैसर्गिक है, यह देव दुर्लभ गुण बनाती है। छोटे बच्चे दिन में 300 बार हंसने के कारण ही ईश्वर के रूप कहलाते हैं। वयस्क मात्र 17 बार हंसते हैं। दिन में कम से कम 3 बार खिलखिलाकर हंसने वाले चिकित्सक के पास नहीं जाते। हंसना व्यायाम है, इससे रस ग्रंथियां पाचक रस का निर्माण करती हैं। हंसना सकारात्मक और रचनात्मक क्रिया है, इससे एंडार्फिन दर्द निवारक रसायन का स्राव होता है। प्रसन्नता से जीवन के रंग खिल उठते हैं। यह एक नैसर्गिक उपहार और शाश्वत आनंद है। हम जितनी अधिक प्रसन्नता और हंसी लुटाते हैं वह उससे अधिक हमारे पास आती है। प्रसन्नता से परिपूर्ण व्यक्तित्व सम्मोहित करता है। हंसी मन की गांठें खोलती है। हंसने से फेफड़े दृढ़ होते हैं। प्रसन्नता यौवन का श्रृंगार है, यह लक्ष्य प्रदान करके निंदा निराशा से बचाती है। हंसना जीवन में एक योग है। हंसते समय नकारात्मक भाव विस्मृत हो जाते हैं। किसी को हंसाना एक बड़ी कला है। हंसने के क्रम में आता है मुस्कुराना। यह शुद्ध हृदय का स्वभाव है। प्रसन्नता रस

0: एवं आनंद की ज्योतिर्वान रेखा है। स्वाभाविक मुस्कान अलौकिक प्रीति का संचार करती है। हंसने की कला मुखमंडल चमकाती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन समस्याओं का समाधान हंसी करती है। हृदय विराट बनाने के साथ सेवा करने की प्रेरणा देती है। प्रसन्नता की हंसी जीवन में उस औषधि की तरह है जो मनुष्य के दुखों और घावों को ठीक करने में सर्वाधिक प्रभावकारी है। हंसी वह चमत्कारिक योग है जिससे अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। हंसने की मूल आत्मा प्रकृति के इंद्रधनुषी रंग में है। चाहे पहली किरण में फूलों पर गुनगुनाते भ्रमर हों, तितलियां चहचहाते पक्षी हों, या मन के आंगन में खिली हुई प्रसन्नता, लय हंसी है। हंसना स्वाभाविक व्यायाम है। आकर्षित करने और संबंध को दृढ़ रखने में हंसने की कामना हर स्थिति में है। प्रसन्नता और हंसी जीवन का मंगल प्रभात है।
1: अभी आपने सुना आज का सुविचार, हंसने की कला। वाचन स्वर था डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। आज है मंगलवार और ऐसा माना जाता है कि आज का दिन भगवान बजरंग बली को बेहद पसंद है। तो आइए आज हम भी अपनी आराधना का आरंभ करें उन अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी के स्मरण से, क्योंकि उनका स्मरण भी मन को असीम शक्ति और साहस से भर देता है। तो चलिए हम भी चलें उनकी शरण में और हृदय से पुकारें जय बजरंगबली।

जय श्री हनुमान। श्रोताओं, जीवन में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईश्वर न्याय करता है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा हमारे अपने स्वयं के हाथों से लिखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों की गति न्यारी।

श्रोताओं, ईश्वर का नाम जीवन में सबसे बड़ा सहारा है। राम और सिया, ये दो दो अक्षर के नाम मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को संबल देते हैं। तो आइए सुबह सवेरे हम भी सिया राम के चरणों में नतमस्तक होते हुए सुने ये पावन भजन।

जी हाँ श्रोताओं, यूं ही नहीं कहा जाता कि जिसके मन में राम बसे वो सभी सुख पाता है। श्रोताओं, सांसारिक धन दौलत क्षण भंगुर है, लेकिन प्रभु भक्ति का धन अमूल्य और चिरस्थाई है। भक्ति के इसी आनंद और आत्मिक समृद्धि का सुंदर भाव लिए आइए सुने ये पावन भजन।

श्रोताओं, परमात्मा दूर कहीं नहीं है, वे तो हर हृदय में प्रेम, करुणा और विश्वास के रूप में विराजमान हैं। आवश्यकता केवल उन्हें सच्चे हृदय से महसूस करने की है।

श्रोताओं, इन्हीं भक्तिमय सुरों के साथ अब आज का आराधना कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ईश्वर से यही मंगल कामना है कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 217।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति

सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत परगांवकर एवं संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: अपने श्रोताओं को हम बता दें, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ

0: का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भोजन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही सब सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम अक्सर बड़े पोषक तत्वों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं और उनके कौन कौन से प्रकार हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कैसे लाभकारी होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें हम विटामिन्स और मिनरल्स कहते हैं, जिनकी हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनके बिना शरीर की सही तरीके से कार्यप्रणाली संभव नहीं है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और अन्य तरह की बीमारियां। हम बात करेंगे सबसे पहले विटामिन्स की। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स। ये सभी हमारे शरीर के लिए अलग अलग तरह से फायदेमंद हैं। जैसे कि विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है और हमारी त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें सर्दी जुकाम से बचाने में मदद भी करता है। सर्दियों के मौसम में विटामिन सी का सेवन खासकर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी, जिसे हम अक्सर धूप का विटामिन भी कहते हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। ठंड के मौसम में जब सूरज की रोशनी कम मिलती है, तब हमें विटामिन डी युक्त आहार जैसे कि दूध, अंडा और मशरूम का सेवन करना चाहिए। अब बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम आदि शामिल हैं, जो शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और शरीर में ऑक्सीजन के संचार को सही बनाए रखता है। सर्दियों में अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती है, ऐसे में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पालक, सेब और चुकंदर का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और पोटेशियम शरीर में द्रव्य संतुलन बनाए रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। श्रोताओं, जिंक भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। सर्दियों में जब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब जिंक युक्त आहार जैसे कि कद्दू के बीज, दही और नट्स का सेवन हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैग्नीशियम भी शामिल है, जो हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अच्छी नींद पाने में मदद करता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करने के तरीकों पर भी बेहद ध्यान देना जरूरी है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करने के तरीकों पर बात करें तो आप अपने दैनिक आहार में विभिन्न प्रकार के ताजे फल और सब्जियां, नट्स, दालें और डेयरी उत्पाद शामिल कर सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में जब हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, तब इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बेहद जरूरी हो जाता है। श्रोताओं, पूरी उम्मीद है कि आज सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, सभी को नमस्कार।
1: भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नीना सोनकर से ये जानकारी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 6:30 से ICC विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे अपने दिल्ली केंद्र से। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा कन्नौज और पीलीभीत जिलों की खबरें। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समात फरमाइएगा शेरे नशिश्त। शुरका होंगे डॉक्टर जाहिद अली दानिश, अहमद उल्ला खान, अजर नुमानी, मोहम्मद इरफान सागर और डॉक्टर जावेद अल्लाह खान जावेद नसीमी। आज ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। प्रातः 7:31 पर जानकारी और मनोरंजन का खजाना लेकर आएगा कार्यक्रम आज सुबह। अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 7:10 से सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे रविशंकर देहाती व साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:45 पर। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहनें सुन सकेंगी फरमाइशी फिल्मी संगीत हेलो अपराजिता के अंतर्गत। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता। बातचीत का विषय रहेगा खरीफ मक्का की उन्नत खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रभाकर सिंह, भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। रात्रि 10:30 से सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा अलका सिंह के बांसुरी वादन का। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 6:30 से सुनिएगा ICC विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम विविधा। दोस्तों, आज की ये पेशकश समर्पित है आकाश की अनदेखी चट्टानों को, जो न सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्य समेटे हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी एक सवाल बन सकते हैं। आज यानी 30 जून को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। दुनिया भर में आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, या फिर आप कह सकते हैं एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन खासतौर पर क्षुद्र ग्रहों और उनके प्रभाव से होने वाले संभावित खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। एस्टेरॉयड डे का मकसद लोगों के बीच क्षुद्र ग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाना और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को सतर्क करना है। दोस्तों, शायद आपने भी कभी कोई खबर सुनी हो कि एक विशाल उल्का पृथ्वी के पास से गुजरेगा, या फिर आपने सुना होगा कि डायनासोर का विनाश क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टक्कर के कारण हुआ था। तो आइए आज बात करते हैं इन रहस्यमयी अंतरिक्ष पिंडों की, जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आज के कार्यक्रम में कोशिश करेंगे हमारे ब्रह्मांड के कुछ अनछुए रहस्यों को जानने की। तो आइए निकल पड़ते हैं छूने आसमान, तो साथ में बने रहिएगा क्योंकि आपको ले चलेंगे हम सितारों के पास तक।

दोस्तों, शुद्र ग्रह वो चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ग्रहों की तरह आकार में ये बड़े नहीं होते। इनमें से अधिकतर मार्स और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट में ही पाए जाते हैं। कुछ तो पृथ्वी की कक्षा में भी कभी कभी आ जाते हैं और तभी ये बनते हैं हमारी चिंता का कारण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसका कारण था एक उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह का वायुमंडल में फटना, और इससे हमारी धरती को, हमारी प्राकृतिक संपदा को बहुत हानि हुई थी। इस घटना के प्रतीक के रूप में भी 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है।

अब बात आज के दिन के महत्व की। तो दोस्तों, एस्ट्रॉइड डे मनाने का अपना अलग महत्व है। इस दिन को खास तौर पर क्षुद्र ग्रह से होने वाले खतरनाक प्रभावों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उनसे जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दरअसल आज भी कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्षुद्र ग्रह वास्तव में क्या होता है और इसके प्रभाव से हमारी दुनिया में क्या कुछ हो सकता है या कितना विनाश हो सकता है। ऐसे में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अब सवाल एक मन में ये भी उठता है कि अगर ये इतने खतरनाक है तो हम इनका अध्ययन क्यों करते हैं? तो दोस्तों, एक तो इनमें हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हुए हैं, और दूसरा, अगर भविष्य में कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़े तो हम उसे समय रहते रोक सके। और हाँ, कुछ क्षुद्र ग्रहों में बहुमूल्य खनिज भी होते हैं, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष खनन का रास्ता भी खुल सकता है, जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने का विचार आया एक वैज्ञानिक से, डॉक्टर ब्रायन मे।

जो खुद एक खगोल शास्त्री होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध गिटारिस्ट भी हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों और आम जनमानस को क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूक करने का संकल्प लिया और साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के रूप में मान्यता दी।

तो दोस्तों, क्षितिज पार जो चुपचाप घूमे, अनगिनत कहानियां अपने संग लाए, कभी चेतावनी कभी खजाना, ये चट्टाने भी तो इतिहास दोहराए। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पर हम न केवल अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं को जानें, बल्कि विज्ञान, सुरक्षा और जिज्ञासा की इस यात्रा का हिस्सा भी बने। याद रखिए, अंतरिक्ष में कोई चीज छोटी नहीं होती, क्योंकि हर क्षुद्र ग्रह एक बड़ी कहानी कहता है। फिर मिलेंगे विविधा के अगले किसी अंक में एक नए सफर में। तब तक आकाश की ओर नजर उठाइए, कौन जाने कोई कहानी वहां इंतजार कर रही हो। दीजिए अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को आज की विविधा से अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

0: ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई कल अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में कल 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीलीभीत सहित प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
1: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम डिजिटल युद्ध स्मारक त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मुरादाबाद में विकास कार्यों, राजस्व, कानून व्यवस्था तथा लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना के संबंध में मंडलीय समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टैंप और न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि यह निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
3: स्टैंप विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम स्थिति बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ, उसको हम निरस्त करते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में

0: रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज से यूपी टीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार कल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल HSD की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 12 जून को ये अस्थायी नियामक उपाय लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल HSD देने की समय सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वो ईंधन की खरीद खुदरा पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से करें। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में 15 बेड के निजी वार्ड और ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में 13 बेड के अत्याधुनिक ICU का उद्घाटन किया। सांसद निधि से तैयार इन दोनों सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिरोजाबाद जिले के फरीहा थाना क्षेत्र के चिडरई गांव में बीती रात तेज आंधी के कारण एक ई रिक्शा पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एटा जिले के अबागढ़ से करीब 8 सवारियों के साथ फरीहा आ रहे ई रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर जाने से ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और सवारियां पेड़ के नीचे दब गईं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय 5 सवारियों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटों में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पीलीभीत जिले में बीती रात से हो रही वर्षा से वहां के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिनों के भीतर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो

0: कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: एक नई सुबह, नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सुबह और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। आज के इस हसीन खूबसूरत सफर में मेरे और आपके साथ हैं
1: मैं कीर्ति विश्वकर्मा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: तो कीर्ति, एक बात बताइए
1: जी,
0: आज सुबह आपकी नींद किसने खोली? मेरा मतलब है अलार्म ने, चिड़ियों की चहचहाहट, या फिर घर में किसी ने बड़े प्यार से आवाज लगाई कि कीर्ति उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है।
1: इतनी सुबह कोई नहीं जागता, मैं ही जागती हूँ। अलार्म बहुत तेजी से जगाता है मुझे कि अब उठ जाओ, जाना है।
0: अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया है ना, इसमें अलार्म की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है।
1: बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चलता ना, आप मोबाइल के स्क्रीन में डूबे रहते हैं और जब नींद आती है तो भी आप डूबे रहते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है रिमाइंडर और अलार्म की, आपको समय की जो याददाश्त है वो बनी रहे।
0: बिल्कुल, लेकिन पता है मैं कुछ ऐसा लोगों को भी जानती हूँ कि जिनकी नींद चाय की खुशबू से खुलती है।
1: हाँ, ये बात तो है
0: भाई, हमारे आपके घर में ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं। जैसे ही रसोई में अदरक और इलायची की महक आती है ना, तो बस आंखें खुल जाती है, उन्हें किसी अलार्म की, किसी की आवाज की, किसी के हाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अब भाई जिसे बैठे बैठे मिल जाए उसके लिए तो यही बात हो जाती है ना, वरना जिसे बनानी है चाय उसके लिए अलग बात हो जाती है।
0: नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे भी चाय बड़ी पसंद है और मैं खुद से उठती हूँ इसलिए कि मैं चाय बनाऊँ,
1: क्या बात,
0: और मैं पी लूँ। तो भाई ऐसे चाय बस जो चाय को बहुत पसंद करते हैं वो सब अपना अपना चाय का कप लेकर के बैठ जाएं और अगले आधे घंटे तक मैं और कीर्ति ऐसे ही बातें करते रहेंगे और आपकी चाय का आनंद बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि भाई भाग दौड़ तो शुरू होने ही वाली है। जैसे ही आप काम पर निकलेंगे तो बस भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, लेकिन इस भाग दौड़ में कुछ पल अपने लिए, अपनों के लिए निकालना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपने रेडियो पर पसंदीदा प्रोग्राम सुनते हैं तो यकीन मानिए पूरा दिन बिल्कुल सुकून से भर जाता है।
0: जी हाँ, और आज तो फिर 30 जून है,
1: हाँ?
0: महीने का आखिरी दिन भी है, तो ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इस महीने का स्वागत किया था हमने।
1: हाँ?
0: समय तेजी से बहुत तेज
1: अभी
0: से चल रहा है,
1: महीने की स्वागत के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी आज से।
0: बिल्कुल, तो ढेर सारी बातें अभी हम और करेंगे, लेकिन हमने वादा किया है कि चाय का स्वाद जो है थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो एक मीठा मीठा सा नगमा सुनवा दे अपने श्रोताओं को।
1: बिल्कुल,

0: लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म चांदनी का ये खूबसूरत सा गीत। तो उम्मीद है कीर्ति के हमारे श्रोताओं को ये नगमा पसंद आया होगा। क्यों,
1: बिल्कुल क्यों नहीं, इतने मीठे मीठे गीतों से आपने शुरुआत की है कार्यक्रम की, हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा। और इस गीत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत। लेकिन रिंकी जी, अगर मैं पूछूं कि हमारे साथ कौन सी वो चीज़ है जो चलती है, तो आप क्या बोलेंगे?
0: भाई देखिए, अपनों का प्यार, अपनों का साथ, है ना, ये हमेशा हम चाहे कहीं भी रहे, हाँ, हमारे साथ चलता है और ऐसा होना भी चाहिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी दूसरे के साथ रहना पड़ेगा जब उसको आपकी जरूरत हो।
1: और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे साथ चलती है, वो है हमारी सोच।
0: बिल्कुल, हमारी सोच, हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हमें लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, किस नजर से हमें देखेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व पर।
1: और यही चीजें बताती भी हैं कि जो हम पीछे लेके चल रहे हैं वो नकारात्मक है या सकारात्मक है, प्यार है, मन में दुख है या पीड़ा है, या किसी के लिए कड़वाहट है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। तो जितना हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, उतना ही हमारा जीवन आगे की ओर अच्छा ही बढ़ता जाएगा।
0: बिल्कुल, और इसमें हमारी मदद करते हैं सुविचार, जो लोग कह गए हैं और वो वाकई वर्क करते हैं, वो जीवन में बहुत काम आते हैं। तो क्यों ना अपने श्रोताओं को आज का सुविचार बता दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, फटाक से हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज का सुविचार क्या कहता है। तो आज का सुविचार कहता है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते।
0: वाह कीर्ति, क्या बात कही कि

0: वो काम करने का अपना ही मजा है जिसे लोगों ने मान लिया हो कि ये तो भाई तुमसे नहीं होगा।
1: हाँ, जीवन में देखिए चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी सकारात्मक होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे उस चैलेंज से अगर किसी को मुश्किल में पड़ जाए, किसी को परेशानी हो, तो वो नहीं सही है। हम आगे बढ़े और दृढ़ता के साथ में आगे बढ़े, तो ये चैलेंज जरूरी है कि हम अपने दिल में ये जिद रखें कि हमें तो बस अब करके दिखा देना है।
0: बिल्कुल, खुद पर विश्वास हो और दिल में हो एक जिद।
1: ये जिद जो है वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। और चलिए इसी बात पर एक गाने को भी हम एंजॉय कर लेते हैं।

0: दिल ये जिद्दी है, इस गाने को अभी एंजॉय कर रहे थे आप विशाल ददलानी की आवाज में, और ये गाना था फिल्म मैरी कॉम से। और रिंकी जी, दिल जिद्दी है, आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए हमारे प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल है कि हम अपने प्रोग्राम में अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन।
1: बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम ही इंफोटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, तो एंटरटेनमेंट हो गया है, अब इन्फॉर्मेशन की बारी है, तो कुछ जानकारी अपने श्रोताओं को दी जाए और आज के पन्नों में झांका जाए।
0: हाँ बिल्कुल, आज का दिन देखिए इतना खास है, सुबह सुबह का मौसम कितना रूमानी सा हो गया था, बारिश की बूंदें पड़ रही थी और चारों तरफ जैसे लग रहा था कि मजा ही आ जाएगा।
1: स्टूडियो आने में भी एक अलग सी उत्सुकता थी कि कैसे पहुंचे, है ना, बारिश हो रही थी हल्की हल्की,
0: काश उड़ करके आ जाते सुपरमैन की तरह। और बताओ रिंकी जी, आज इतिहास की बात कर रहे हैं तो आज का दिन ना बहुत खास है, क्योंकि 1938 में आज ही के दिन सुपरमैन जो कैरेक्टर है ना, वो पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर आया था नजर, और बच्चों के लिए आप तो जानते हैं इसकी सबसे पसंदीदा सुपर हीरो है ये सुपरमैन, हम लोगों ने भी इसको खूब इंजॉय किया है, तो आज का दिन सुपरमैन के नाम
1: सुपरमैन के नाम और हमारे बचपन के भी नाम, क्योंकि सुपरमैन हम सबका फेवरेट रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज ही के दिन 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में विशाल उल्कापिंड विस्फोट की घटना हुई थी,
0: और इसी के लिए ही आज के दिन को हर साल जो है मनाया जाता है अंतरिक्ष शुद्ध गृह दिवस के रूप में,
1: इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध गृह दिवस के रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं, तो ये दिवस भी आज मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, और आज ही के दिन 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि

0: थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का दुनिया के सामने रखा था।
1: बहुत खूब। और आपको बता दें कि 1937 में दुनिया का पहला आपातकालीन टेलीफोन नंबर 999 ब्रिटेन में शुरू किया गया था, और आगे चल के इसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि अब लगभग लगभग हर देश में, हर राज्य में एक आपातकालीन नंबर जरूर होता है। और
0: बिल्कुल,
1: मैं तो ये कहूंगी कि हम सबको ये आपातकालीन नंबर याद होने चाहिए, डायल पे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या या इमरजेंसी बताकर नहीं आती। तो अगर आपके पास पे ये जानकारियां होती है तो बहुत अच्छा होता है। और ये शुरुआत जो 1937 में हुई, ये बहुत खास थी, बहुत महत्वपूर्ण थी,
0: और ये सोच भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। खैर, आगे बढ़ रहे हैं हम, और देखिए इतनी सारी हमने आज इतिहास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको डिस्कस कर लिया है।
1: एक और चीज आपको बता दूं और अपने श्रोताओं को भी कि 1966 में विश्व कप फुटबॉल का शुभंकर विली पहली बार प्रस्तुत किया गया था आज ही के दिन यानी 30 जून को। और एक और चीज, सन 2000 की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी थी।
0: देखिए कितना आसान हो गया है आजकल सारी चीजें करना डिजिटली। जब हमारा सिग्नेचर भी डिजिटल हो जाता है तो हमें कहीं डेस्टिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं होती, हम ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।
1: देखिए ना, जब कोई चीज शुरू होती है कीर्ति, तो उसकी महत्ता का हमें अंदाजा नहीं होता, उसकी इम्पोर्टेंस का हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग में आने लगती है, तो वो हमारी नीड बन जाती है, हमारी जरूरत बन जाती है। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स है, अब देखिए सभी के पास, सभी ने अपने अपने फोन पे सेव किया होगा शायद कि डिजिटल साइन है, जहां कहीं जरूरत पड़े फटाफट हम भेज देते
0: हैं और हमारा काम बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है।
1: जी हाँ। अच्छा, हमने अभी बात की कि आज एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है, आज एक और खास दिन मनाया जाता है, पता है क्या?
0: वो है हूल क्रांति दिवस।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि आज ही के दिन, बात करें हम 1855 की, तो आज के दिन हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। जबकि इस बारे में बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं कि जो लोग हैं वो जब अपने
1: जी
0: सुरक्षा और अपने आगे बढ़ने की बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो एक कहीं ना कहीं क्रांति होती है। झारखंड की बात करें, साहिबगंज की है, भोगना डी है, वहाँ का क्षेत्र में आदिवासी भाइये हैं सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन लोगों ने अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूका था। इसे आदिवासी अस्मिता और करो या मरो की लड़ाई के रूप में भी याद किया जाता है।
1: इसके साथ ही आज विश्व सोशल मीडिया दिवस यानी वर्ल्ड सोशल मीडिया डे भी मनाया जाता है कीर्ति।
0: हाँ, देखिए सोशल मीडिया आज हमारे साथ में कुछ इस कदर जुड़ गई है कि भाई नींद है, खाना है, पीना है, मतलब इसके बिना कोई काम नहीं होता है।
1: जी, ये दिन याद दिलाता है कि सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन आपको बताएं कि इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कई बारी हम स्कैम या फिर दूसरे फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन असल में वो कहीं ना कहीं हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारी जो एक कहते हैं ना कि स्वास्थ्य है, उसको भी कहीं ना कहीं हानिकारक मोड़ पर लेकर के आ जाती है। तो आप अपना पूरा ख्याल रखिए और सोशल मीडिया जब भी आप यूज करें बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करें और उसके बारे में डिटेल्स सबसे पहले जरूर पता करें।
1: जी।

0: लव, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत सी आवाज सी चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। रिंकी जी, जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मौसम की भी बात हमने आज की, बारिश की बूंदें गिर रही थी ना, तो एक सोच मेरे मन में आ रही थी और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में आती होगी कि जहाँ पे पानी की कमी है, लोग सोचते होंगे कि काश ये बारिश का पानी हम इकट्ठा कर लेते, है कि नहीं
1: जी? सोचते नहीं है, बल्कि इसको सोचना ही चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों बूंदें जो धरती पर गिरती हैं वो जाती कहाँ है, बर्बाद ना हो वो। इसीलिए जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021 में एक अभियान चलाया। आपको पता है उसका नाम?
0: कैच द रेन।
1: जी बिल्कुल करेक्ट, कैच द रेन। और इसका मतलब यही था कि जहां बारिश हो, जब बारिश हो, वहीं उस पानी को सहज लिया जाए। बारिश की हर एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सहजना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: जब एकदम झमाझम बारिश हो तो आप कोशिश कीजिए कि उस पानी को आप सहेज करके रखें और इस तरीके कैसे उसको आप फिर रिफ्रेश करें ताकि दूसरे कामों में लाया जा सके उसे।
1: बिल्कुल, सोचिए ना दोस्तों, कुछ बूंदे हमारी प्यास बुझाती हैं, कुछ खेतों को हरियाली देती हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में पानी बिना उपयोग के बह जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम इस अमूल्य जल को बचा नहीं सकते हैं?
0: बिल्कुल, हम बचा सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके अब हमारे सामने हैं, जिसका उपयोग करके हम बारिश की बूंदों को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए ना, भारत सरकार ने कैच द रेन अभियान भी इसीलिए चलाया है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जल संचयित करके रखें, क्योंकि ये तो हम सब ने बचपन से सुना है कि जल है तो
0: जीवन है।
1: जीवन है।
0: चलिए इसी बात पे हम अपने मौसम विज्ञानी से भी बात कर ले, क्योंकि देखिए बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो सबके मन में ये उत्सुकता होगी कि आगे मौसम कैसा होगा।
1: जी हाँ,
2: आज सुबह कार्यक्रम में एक बार फिर है हमारे साथ हमारे मौसम विज्ञानी मोहम्मद दानिश सर। नमस्ते सर, कैसे हैं
3: जी? नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अच्छा हूँ।
2: तो बताइए सर, हमारे लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल?
3: जी, मौसम की बात करें तो लखनऊ वासियों को सबसे पहले बहुत बड़ी शुभकामना है कि मानसून का आगमन अब शुरू हो रहा है
2: जी,
3: और कहीं ना कहीं जो पिछले कई दिनों से काफी गर्मी का एहसास था, धीरे धीरे यहाँ से कमी आएगा और मौसम इधर अगले 4-5 दिन तक अच्छी वर्षा होगी, गरज चमक के साथ होगी और तेज हवा भी चलेंगी। तो लोगों से गुजारिश है कि जब मानसून का आगमन होता है तो बिजली गिरने की प्रबल संभावना होती है, तो अगर कहीं भी अगर बिजली या तड़क धड़क हो रहा है तो उससे थोड़ा बचाव रखिए और उस वक्त जैसे घरों में पनाह ले, पेड़ के नीचे ना खड़ा रहे, क्योंकि वहां पर बिजली लगने की काफी संभावना बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल,
3: तो कुल मिला के कहें तो मौसम यहाँ से थोड़ा खुशनुमा रहेगा और आने वाले अगले 4-5 दिन में अच्छी वर्षा होने की संभावना है।
2: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और आज सुबह कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को मौसम के बारे में इतनी खुशखबरी जानकारी देने।

0: के लिए। थैंक
1: ओके धन्यवाद,
0: यू सर, नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: तो भाई कीर्ति, ये हमारे साथ थे आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी, और इन्होंने कितनी अच्छी जानकारियां भी दी, साथ में मौसम की तो जानकारी दी ही कि भाई बारिश तो हो रही है, अच्छा सबको लगता है, लेकिन हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए,
3: विशेषकर बिजली गिरने की संभावना अगर हो तो आप अपने किसी पेड़ वेड़ के नीचे ना खड़े हुए और इससे बचाव, अपनी सुरक्षा करें और मौसम का आनंद उठाएं गीतों के साथ में।

भावना अगर हो तो आप अपने किसी पेड़ वेड़ के नीचे ना खड़े हुए और इससे बचाव अपनी सुरक्षा करें और मौसम का आनंद उठाएं गीतों के साथ में।

0: कीर्ति, देखिए ना, देखते देखते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला।
1: और इस गिलहरियां सॉन्ग के साथ में, जो कि दंगल फिल्म से हमने लिया था, कितना एंजॉय कर लिया।
0: बहुत एंजॉय किया, लेकिन ये भी सच है कि सुबह की अच्छी शुरुआत हो तो पूरा दिन खुशनुमा हो जाता है, क्यों?
1: और मन इसी तरह फुदकता रहता है।
0: तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियां, नए अवसर और ढेर सारी मुस्कानें लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है। अब हमें, यानी मुझे रिंकी और
1: कीर्ति विश्वकर्मा को दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे इस आज प्रोग्राम के साथ में और बहुत सारे ढेर सारे प्रोग्राम के साथ में, जो कि हम आकाशवाणी लखनऊ से आपके लिए प्रसारित करते रहते हैं। तो अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा
0: और रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब आज के नमस्ते लखनऊ से दीजिए अनुमति। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी

0: विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1ले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन

0: प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पहली जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा

0: महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital.

0: कार्बन के सिफर अखराज वाली गाड़ियों पर मरकूज है। इसका मकसद दिल्ली को बतदरीज आलूदगी से पाक शहर में तब्दील करना है ताकि इससे लोगों को फायदा हासिल हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगले 4 वर्षों में मरहलावार इस पर अमल दरामद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया है। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और साल बसाल रोड टैक्स माफ करने में 8 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर दिल्ली के लोगों को इस पॉलिसी से तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के फवायद हासिल होंगे।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की एक खुली जारहियत, अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इख्तदार आला पर हमला और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। ये इकदाम पाकिस्तान के उस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वह अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। ताहम ऐसी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। भारत ने हमले में हलाक होने वालों के अहल खाना से गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का एदा किया है। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी की है और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मरकजी वजारत सेहत ने मरकजी हुकूमत के तमाम महकमों और इदारों को आवारा कुत्तों के हमलों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर आज से अमल करने की हिदायत की है। ये हिदायत उस वक्त सामने आई हैं जब हुक्काम आवारा कुत्तों के हमलों से निमटने, अवाम की हिफाजत और अदालती हिदायत की तामील के मकसद से इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों से कहा गया है कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर मुकर्रा मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाए। यह हुक्म गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसका मकसद अवामी मकामात को खासतौर पर बच्चों और मरीजों के लिए महफूज बनाना है जहां उनका रोज आना जाना होता है। हर साल 30 जून को संथाल इनकलाब की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कबायली इनकलाबियों सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में हर साल हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। 30 जून 1855 को आज ही के दिन सिद्धों और कान्हों ने भोगना डी से बरतानवी हुकूमत और इस्तेहसाल पर मबनी सरमायादाराने निज़ाम के खिलाफ संथाल हूल का आगाज किया था। कबायली तारीख के माहिरीन इस तहरीक को आज़ादी की पहली मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करार देते हैं। मुअर्रखीन का कहना है कि तकरीबन 20,000 लोगों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुसल्ला जिद्दोजहद का आगाज हुआ जिसमें संथालों के अलावा दीगर मकामी तबकात भी शामिल हुए। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: हूल दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन शहीदों ने कबायली सोसाइटी के खिलाफ इस्तेहसाल और उनकी शनाख्त के तहफ़ की खातिर तारीखी जद्दोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि शहीदों की गिरा कदर कुर्बानी मुल्क के सभी शहरियों को तरगीब देती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हूल दिवस के मौके पर संथाल इनकलाब के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर दाखिला ने कबायली शनाख्त और मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों को याद किया। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज़ से मुतालिक तनाज़े को हल करने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आबनाए हुरमुज़ के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है।

घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली।

0: है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। संगीत की महक, आपके अपनेपन की खुशबू और ढेर सारी भावनाओं से सजे इस खास कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं शब्दों से रिश्ते बनते हैं और संगीत उन रिश्तों को और भी खूबसूरत बना देता है। आपके भेजे हुए मेल हमारे लिए सिर्फ संदेश नहीं बल्कि आपकी मुस्कान, आपकी यादें और आपका स्नेह है। तो अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं या अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। आइए शुरू करते हैं आपके प्यार और आपकी पसंद का यह खूबसूरत सफर। पहला मेल पढ़ने का समय है और आज का पहला मेल हमें भेजा है दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। झज्जर हरियाणा से मेल कर रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया, मास्टर अल कबीर भी हमें मेल कर रहे हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार लोहारा पालोद छत्तीसगढ़ से। और एक मेल आई है हमारे पास किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी की से विजयपाल यादव, शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा यादव, गुड़िया यादव, बबलू यादव व विजय पांडे जी की। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया। और आज मौसम बहुत खूबसूरत है सुबह से ही और गर्मी से राहत मिली है। और ऐसी ही एक खूबसूरत सी फरमाइश आप में से ही एक श्रोता ने की है कि हमें कश्मीर की कली फिल्म से एक गीत सुनवा दीजिए। तो लीजिए आपकी फरमाइश करते हैं हम, पूरी मौसम का आनंद लीजिए आकाशवाणी लखनऊ से प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ और ये खूबसूरत नगमा आपके लिए।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुन रहे थे आप। फिल्म थी कश्मीर की कली। इस गीत का संगीत तैयार किया था ओपी नैयर ने। दोस्तों, बारिश का खूबसूरत मौसम तो आ गया है और इसके साथ एक जिम्मेदारी भी ये मौसम लाया है। जी हाँ, बेशक मौसम का मज़ा लीजिए, खूब चाय और पकौड़ियाँ खाइए, लेकिन इसके साथ जल संचयन का भी इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि वर्षा की एक एक बूंद बहुत कीमती है, या ये कहें कि अनमोल है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि बारिश की एक एक बूंद ज़मीन के अंदर जाए, क्योंकि वो वापस हमें ही मिलेगी। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला मेल जो हमें भेजा है। गांव खारिया ढाणी, जिला सिरसा, हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या ने आपकी फरमाइश है कि फिल्म आंखें का एक गीत सुनवा दीजिए। इस गीत में आवाज़ें हैं आशा भोसले और कुमार सानू की, तो ये गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे। कुछ और मेल हमारे पास आई हैं, उनका नाम भी हम आपको बता दें। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमें मेल कर रहे हैं। एक मेल गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल और जगदीश जौहरी की भी हमारे पास आ चुकी है। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मेल कर रहे हैं मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। तो लीजिए, आप सभी को यह खूबसूरत सा नगमा सुनवा रहे हैं। इंजॉय कीजिए, आपके रेडियो सेटअप पहुंच रहा है ये ट्रैक।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। दोस्तों, आपका भेजा हुआ हर एक संदेश हमारे लिए खास होता है, लेकिन कभी कभी समय की कमी के कारण या कुछ और कारण होते हैं जिससे हम आपका मेल कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुरों का ये सफर जारी रखते हैं। कार्यक्रम में अगला मेल हमें मिला है डिस्ट्रिक्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। शिवा गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप का आपकी फरमाइश है। आशा भोसले और शैलेंद्र के स्वर में एक गीत सुनवा दीजिए फिल्म रफू चक्कर से। तो आपको ये गीत ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन कुछ और श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं और हमें लगातार सुन रहे हैं, मेल कर रहे हैं, उनके नाम भी ले लें। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं राम राम जी। तो सुबह की राम राम आपको भी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का एक मेल हम तक पहुंच चुका है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और आदलपुरा गोगामा से संजय बामनिया, माया, कान्हा और कृष्णा का मेल हम तक आ चुका है। तो सभी श्रोता एंजॉय करें खूबसूरत सा ट्रैक आशा भोसले और शैलेंद्र के स्वर में फिल्म रफू चक्कर से।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

दोस्तों, हर दिन ज़िंदगी का ख़ास होता है, हर पल ख़ास होता है। बस ज़रूरत है कि उस ख़ास पल को हम पहचाने, उसे अपनाएं और बस उसके हिसाब से ज़िंदगी जिए, या फिर उस पल को अपने हिसाब से बना लें। आइए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ और पढ़ते हैं कि इसे किसने हमें भेजा है। ये मेल भेजने वाले हैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार। एक मेल हमारे पास आई है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली

विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की। श्रोताओं, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम और गुड़िया भी हमें मेल कर रहे हैं। एक मेल खैल बाजार पानीपत से आई है, इसे भेजा है नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का ने। इन्होंने फरमाइश की है एक गीत सुनवा दीजिए याराना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। तो भाई, दोस्त बहुत ख़ास होते हैं हम सभी की ज़िंदगी में और ये गीत बहुत ही खूबसूरत है जो अपनी दोस्ती को बयान करता है। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में याराना फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए पढ़ते हैं अगला मेल जो हमें भेजा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा का भी मेल हम तक आ चुका है। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा भी मेल कर रहे हैं। एक मेल हमारे पास बीड शहर महाराष्ट्र से आई है। नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा जी की। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी भी हमें मेल कर रहे हैं। आप सबके ढेर सारे प्यार का ढेर सारा शुक्रिया, तहे दिल से आभार आपका। खूबसूरत सा नगमा आपको सुनवा रहे हैं आप में से ही एक श्रोता की फरमाइश आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म यादों की बारात से।

0: श्रोताओं, इन्हीं मीठे गीतों और आपके प्यार भरे संदेशों के साथ अब हम आपसे लेना चाहेंगे अनुमति, क्योंकि कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। आपके प्यार भरे संदेशों के लिए एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। यूं ही हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। दीजिए रिंकी शर्मा को अनुमति। नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन एवं योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट योग प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति अमूल्य धरोहर है, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। शास्त्रों में भी स्वस्थ शरीर को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। जनपद की सभी तहसीलों, विकास खंडों और नगर निकायों, ग्राम पंचायतों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कन्नौज जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषि प्रदर्शनी और विकसित सघन खेत बचाओ अभियान सहित विभिन्न जागरूक कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदर्शनी में भूमि

0: संरक्षण, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, पंचायती राज और सूचना सहित विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना रहा। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। कन्नौज जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के अवसर पर ठठिया मंडी में कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ शामिल हुए। कार्यक्रम में किसानों को आलू की नई किस्मों, आधुनिक खेती के तरीकों, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों ने विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं और सवालों पर चर्चा की, साथ ही खेती में नई तकनीकों को अपनाने की जानकारी ली। राज्य मंत्री ने ठठिया मंडी को आलू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के निर्णय पर उद्योग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ ने कहा कि
1: कन्नौज में आलू की किसानी खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं जो नए बीज लेकर के आई, नई पद्धतियां बता रही हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी का कि उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारी इस मंडी को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे आलू के लिए।
0: उन्होंने कहा कि इससे उन्नत बीज, नई खेती तकनीकों और आलू प्रसंस्करण के उन्नत तरीकों की जानकारी मिलेगी, साथ ही किसानों की आय बढ़ेगी और बेहतर मूल्य सुनिश्चित होंगे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि आलू सब्जी या चिप्स निर्माण तक सीमित नहीं है, इससे स्टार्च सहित अनेक औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। कन्नौज में प्रस्तावित स्टार्च प्रसंस्करण इकाई से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कन्नौज जिले में भारत सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत टपक एवं फव्वारा सिंचाई के लिए इच्छुक किसानों को 90% तक अनुदान मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना और कम लागत में उपज को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत किसानों को 90% तथा अन्य किसानों को 80% अनुदान का प्रावधान है। चालू वर्ष में 571 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और उद्यान विभाग ने सभी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के तहत 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला हमारा पोर्टेबल सिंचाई के लिए पोर्टेबल पाइप है, इसमें 65% और 75% की सब्सिडी है, और दूसरा हमारा ड्रिप और तीसरा हमारा मिनी स्प्रिंकलर है। तो इसमें 80% और 90% की छूट है। जो हमारे कृषक भाई 2 हेक्टेयर से नीचे हैं, उनका सब्सिडी स्लैब अधिक 90% और 75% स्लैब आएगा, और जो बड़े कृषक हैं उनका जो है 65% और 80% है।
0: अब तक 223 किसानों के खेतों में प्रणाली स्थापित कर उन्हें लाभान्वित भी किया गया है, जिससे जिले का 234 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आ गया है। पिछले साल 1000 से अधिक किसानों ने आवेदन किया था, जिसमें से 705 किसानों को लाभ मिला था। कन्नौज जिले में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सभी विकास खंडों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल भारत की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां समाज के नौनिहालों एवं मातृशक्ति के स्वास्थ्य, पोषण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मार्टफोन उपलब्ध होने से कार्यकर्तियों को विभागीय योजनाओं के संचालन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पोषण ट्रैकिंग तथा शासन की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने में और अधिक सुविधा होगी। तकनीक के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं आएगी, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचेगा। कन्नौज जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जनपद में तंबाकू नियंत्रण एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लोगों को तंबाकू निषेध की शपथ भी दिलाई गई। 29 मई से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां एवं प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित हुई।
3: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
4: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ से अधिक लागत की 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने बांग्लादेश से कई दशक पूर्व विस्थापित 4693 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपे और 100 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवार

0: किसानों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है।
1: पीलीभीत में 5 दशक से इंतजार कर रहे बंगाली परिवारों को भी उनका जमीन का अधिकार और उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रारंभ हो गया है। इन सब के लिए आपको बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं और विश्वास करता हूं कि आप इस संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे।
0: उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इस अवसर पर पीलीभीत से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ पीलीभीत जिले का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
0: सरकार की जनहितकारी नीतियों और अनुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है। पीलीभीत जिले में गोमती नदी को उद्गम स्थल से अविरल बहाने और स्वच्छ रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सभी घाटों पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में जागरूकता मेलों का आयोजन किया गया। इनमें नदी की स्वच्छता और सफाई खुदाई के कार्यों का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। 1 जुलाई से जी राम जी योजना के तहत नदी की खुदाई और साफ सफाई के काम प्रारंभ होंगे। नदी के सभी 16 घाटों पर प्रकाश के लिए सोलर लाइटें लगाई गई हैं और बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था कराई गई है। गोमती नदी के माधवटांडा स्थित उद्गम स्थल पर ग्रीष्मकालीन गोमती महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां स्कूली बच्चों की गोमती पर आधारित प्रतियोगिताएं कराई गई और ब्रज की रासलीला मंडली द्वारा सुंदर लीला मंचन किया गया। सभी प्रतिभागियों को मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा और SDM परमेश कुमार ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर गोमती नदी को सजाने, संवारने और स्वच्छ रखने के लिए सभी 16 घाटों पर 10-10 गोमती मित्रों की तैनाती युवा कल्याण विभाग द्वारा करने की घोषणा की गई। अब तक घोषित किए गए 82 गोमती मित्रों को परिचय पत्र वितरित किए गए। पीलीभीत जिले में गन्ने की फसल के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 2 लाख किसानों के खेतों तक गन्ना विकास विभाग की टीमें पहुँच चुकी है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया कि गन्ने के साथ गेंदे की मिलवा खेती करके किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पीलीभीत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार शामिल हुए। गांव से शहर तक स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मानसून सीजन के चलते 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आमदनी पर संतोष व्यक्त किया।
3: पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र इस बार काफी अच्छा गया है। जहां तक हम लोग बात करते हैं राजस्व की, राजस्व हमारा जो है पिछले साल तुलना में करीब 5 लाख रुपए अभी तक बढ़ चुका है। साथ ही साथ इस बार जो विशेषता रही है पर्यटन सत्र की, उसमें खास बात रही है कि जो टाइगर के बच्चे हैं वो काफी अच्छी संख्या में दिखे हैं और काफी जगहों पे दिखे हैं। करीब 4 बाघिन ऐसी रही हैं जिनके बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के दिखे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पर्यटन सत्र पर्यटकों की संख्या के लिहाज से और जो है साइटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा गया है।
0: उन्होंने कहा इस बार बाघ और अन्य वन्य जीवों की अच्छी साइटिंग होने से सैलानी काफी प्रभावित हुए।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: जिले की हलचल में आज आपने सुनी कन्नौज और पीलीभीत जिलों की खबरें। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम बता दें, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
4: आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका सामीन खैर मकदम है। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से आयशा राहत का सलाम अदब कबूल कीजिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये अदबी प्रोग्राम, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर हाजिर होते हैं जो न सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करते हैं बल्कि हमारे ज़ौक़ो शौक़ की तस्कीन भी होते हैं। जी हाँ सामीन, क्योंकि सामीन नज़्म हो या फिर नसर हो, दोनों का ताल्लुक हमारे दिली जज्बात से है, कैफियात से है और उन बातों से है जो अदब के जरिए ही नुमाया होते हैं। तो सामीन, ऐसी ही एक शेरी नशिस्त का एहतमाम आज हमने अपने स्टूडियो में किया है, जिसमें हमारे मुअज्जिज मेहमानान हमारे दावतनामे पे यहाँ पर शिरकत फरमा रहे हैं। तो आइए उनसे सबसे पहले तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान हैं डॉक्टर जाहिद अली दानिश, जनाब मोहम्मद इरफान इरफान सागर, जनाब अहद उल्ला खां अजन नुमानी, डॉक्टर जावेद उल्ला खां जावेद नसीमी। आप सभी मेहमानान का हमारे स्टूडियो में समीमे कल्ब से खैर मकदम है। समीन, सबसे पहले मैं के लिए आगे बुलाऊंगी जाहिद अली साहब को, उनके इस शेर से, लब पे तारों के फकत बात ना आई तेरी, दास्तां लालो गुल ने भी सुनाई तेरी।
5: चार मिसरे समात फरमाएं।
6: जी।
5: अर्ज किया है कि मोहब्बतों का यूं ही एतराफ रहने दो।
6: मोहब्बतों का यूं ही एतराफ,
5: मोहब्बतों का यूं ही एतराफ़ रहने दो, जमा

0: ना रहता है तुमसे खिलाफ रहने दो,
1: वाह,
0: जमाना रहता है तुमसे खिलाफ रहने दो, और इलाज मरहमे उल्फत है मेरे जख्मों का, इलाज मरहमे उल्फत है मेरे जख्मों का, नहीं है हाजत निश्तर शिगाफ रहने दो।
1: अच्छा है, बहुत उम्दा, वाह,
0: शुक्रिया नवाजिश। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ कि हसद की आग लगी है जनाब अपनों में,
1: हसद की आग लगी है जनाब अपनों में,
0: हसद की आग लगी है जनाब अपनों में, यही तो बात है सबसे खराब अपनों में।
1: वाह।
0: और मेरे भी हाथ में कासा था कुछ सवालों का,
1: मेरे भी हाथ में कासा था कुछ सवालों का,
0: मिलाना एक भी मुझको जवाब अपनों में।
1: वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया नवाजिश। अर्ज किया है कि बड़े सलीके से मिलते हैं मतलबी इंसान,
1: बड़े सलीके से मिलते हैं मतलबी इंसान,
0: अगर है कोई भी इज्जत मुआब अपनों में, अगर है कोई भी इज्जत मुआब अपनों में। अर्ज किया है कि न भाई भाई को समझे न बहन को कोई,
1: न भाई भाई को समझे न बहन को कोई,
0: बड़ा अजीब है अब इज्तिनाब अपनों में।
1: अच्छा,
0: बड़ा अजीब है अब इज्तिनाब अपनों में,
1: हर एक अपने पराए की
0: मर गई गैरत, नहीं है कोई भी पर्दा हिजाब अपनों में, अर्ज किया है कि बड़े ही प्यार से तलकीन कीजिए साहब,
1: बड़े ही प्यार से तलकीन कीजिए साहब,
0: किसी को पीते जो देखो शराब अपनों में।
1: अच्छा है, वाह, अच्छा,
0: शुक्रिया
1: है।
0: नवाजिश करम। और शेर अर्ज करता हूँ कि तलब किया नहीं मैंने कभी भी अपनों से,
1: तलब किया नहीं मैंने कभी भी अपनों से,
0: बस इतनी बात पे है इस्तेराब, और तुम अपने आप को गुमराह मत करो दानिश,
1: तुम अपने आप को गुमराह मत करो दानिश,
0: कमी बड़ी को संभालो जनाब अपनों में, हसद की आग लगी है जनाब अपनों में।
1: वाह, बहुत उम्दा।
0: गजल का मतलब हाजिर करता हूँ।
1: इरशाद
0: कहे कि बड़े पुरकैफ मंजर देखता है, खला में जो भी उड़कर देखता है,
1: वाह,
0: और
1: वही सहरा के बंजर देखता है,
0: जो आँखों से समंदर देखता है। अर्ज किया है कि इस अहदे नौ में खुशहाली के मंजर मुकद्दर का सिकंदर देखता है। अर्ज किया है कि
1: मेरी बर्बादियों के बाद में भी
0: मेरा कासा तवंगर देखता है। अर्ज किया है कि उदासी के हिसारों से बचे तो जुनूने शौक पत्थर देखता है। अर्ज किया है कि उधर बच्चा, तवज्जो चाहूंगा
1: जी जी,
0: कि उधर बच्चा इधर मुफलिस का दिल,
1: उधर बच्चा इधर मुफलिस का दिल
0: खिलौना जब मचल कर देखता है। और मकता देख लें हुजूर के वही इंसान फकत इंसान है दानिश, तासुब से जो हटकर देखता है, बड़े पुरकैफ मंजर देखता है, खला में जो भी उड़कर देखता है।
2: ये थे डॉक्टर जाहिद अली दानिश। अब इसके बाद मैं रुजू करूंगी एक और मोतबर शायर मोहम्मद इरफान सागर साहब के हुजूर कि वो अपने कलाम से सामीन को महसूस करें।
3: गजल का मतला और एक शेर समाद करें।
4: चेहरा चेहरा प्यास के कितने लश्कर थे, हमसे पूछो कैसे कैसे मंजर थे। चेहरा चेहरा प्यास के

0: उसे एक सफेद साय की कितनी थी बरकतें,
1: उसे एक सफेद
0: साय की कितनी थी बरकतें, सर पर न जब वो साया रहा तो पता चला। उसे एक सफेद साय की कितनी थी बरकतें, सर पर न जब वो साया रहा तो पता चला। किस दर्जा सर्द होते हैं शोला मिजाज लोग, किस दर्जा सर्द होते हैं शोला मिजाज लोग। मैंने जब आज उसको छुआ तो पता चला, है कितनी तेज धूप पता था कहाँ हमें, है कितनी तेज धूप पता था कहाँ हमें। सर से वो साहिबान हटा तो पता चला। दो तीन चार और सुन ले, कि जो रोज की है बात वही बात करो हो,
1: जो रोज की है बात वही,
0: जो रोज की है बात वही बात करो हो।
2: क्या बात,
0: बेकार ही यारों का में हालात करो हो।
2: क्या बात,
0: जो रोज की है बात वही बात करो हो, बेकार ही यारों का में हालात करो हो। और एक मुझसे ही मिलने को तुम्हें वक्त नहीं है, एक मुझसे ही मिलने को तुम्हें वक्त नहीं है, औरों पे तो तुम खूब इनायत करो हो। एक तुम्हें वक्त नहीं है, औरों पे तो तुम खूब इनायत करो हो। और ये तर्ज तकल्लुम तुम्हें आया है कहाँ से, ये तर्ज तकल्लुम तुम्हें आया है कहाँ से। होठों से जो फूलों की ये बरसात करो हो। और क्यों चांद से चेहरे पे गिरा रखी हैं जुल्फें, क्यों चांद से चेहरे पे गिरा रखी हैं जुल्फें। क्यों दिन को अमावस की सिया रात करो हो,
2: बहुत अच्छा है।
0: क्यों दिन को आदाब, क्यों दिन को अमावस की सिया रात करो। मक्ता समाज फरमा ले के बेवहमो गुमा राह में मिल जाते हो जावेद, बेवहमो गुमा राह में मिल जाते हो जावेद। दानिश्ता कहाँ मुझसे मुलाकात करो हो, दानिश्ता कहाँ मुझसे मुलाकात करो हो। जो रोज की है बात वही बात करो हो, बेकार ही यारों गमे हालात करो।
3: एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया। उतरा मोहब्बतों का नशा तो पता चला। ऐसे ही खूबसूरत अशार के साथ हमारे दरमियान थे अभी जावेदुल्ला खान जावेद नसीमी साहब। और समीन इसके बाद अब ये नशिस्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जाने से कबल आपको बता दें उन हजरात उन शोरा इकराम के अस्माए गिरामी जो इसमें शिरकत फरमा रहे थे, वो थे डॉक्टर जाहिद अली जाहिद दानिश, जनाब मोहम्मद इरफान इरफान सागर, जनाब अहदुल्ला खां आजर नुमानी और डॉक्टर जावेदुल्ला खां जावेद नसीमी। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से अब अपनी मेजबान आयशा राहत को दीजिए इजाजत।
4: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं रविशंकर देहाती व साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस देवी गीत के साथ।

लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रविशंकर देहाती एवं साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत। अभी आपने सुना इनके स्वर में ये देवी गीत, और लीजिए अब सुनिए ये विदिशिया।

0: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रविशंकर देहाती एवं साथियों का गाया विदेशिया। इसी विदेशिया के साथ अब आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में, क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के बज चुके हैं 10 और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो चलिए शुरू की ये सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू की इस मीठी सी दुनिया में आपका दिल से स्वागत है, जहां हर धुन में छिपी होती है एक कहानी, हर गीत में बसता है एक एहसास, और आज का एहसास क्या कहता है ये हम सब जानते हैं। जी हाँ, आज का मौसम बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बेईमान है। कार्यक्रम का आगाज फिल्म लोफर के इस गीत के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी सिनेमा के वो मीठे मधुर गीत जो दिल को छू जाए और यादों को एक बार फिर से ताजा कर जाए। हमें उम्मीद है कि इस गीत ने आपकी भी कुछ यादें ताजा की होंगी। तो आइए कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ कर भूल कर सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की ही आवाज़ में फिल्म धरती से।

0: श्रोताओं, सुरों और यादों से सजी इस महफिल को अब यहीं विराम देते हैं और फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया। मोरक्को, पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस

0: सप्ताह में सुरक्षित नौवाहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक को पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 5-4 मतों से ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने कहा कि लीसा कुक को पद से हटाने से पहले उन्हें कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था। अदालत ने माना कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति ने किसी गवर्नर को हटाने की कोशिश नहीं की थी। इस फैसले को फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि अदालत ने एक अन्य फैसले में राष्ट्रपति के अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के अधिकार का दायरा बढ़ाया है। लीसा कुक ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
1: नेपाल में नेशनल असेंबली ने विनियोग विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बालगे द्वारा पेश विधेयक बहुमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में लागू कर नागरिकों के लाभ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में निजी विद्यालयों पर प्रगतिशील कर इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जो लोग खर्च उठा सकते हैं उन्हें उन लोगों की सहायता के लिए अधिक योगदान देना चाहिए जो वहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश में एक तिहाई विद्यार्थी सामूहिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। मध्यम आय वाले लोगों के लिए राहत उपाय के अंतर्गत कर छूट सीमा बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि संवैधानिक निकायों के लिए बजट नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि मौजूदा सरकार की कार्यभार संभालने से पहले ही बजट सीमा तय कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट और कार्यक्रमों की घोषणा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास ने बताया कि भारतीय सेना ने वहां एक अस्थायी फील्ड अस्पताल स्थापित किया है जहां भूकंप प्रभावित लोगों का उपचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सेना प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इससे पहले 28 जून को भारत ने शक्तिशाली भूकंपों से प्रभावित वेनेजुएला के लिए आपात मानवीय सहायता सामग्री भी भेजी थी। भारत ने कहा है कि इस कठिन समय में वे वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने संबोधन में ये बात कही। सम्मेलन का विषय था कानून के शासन की रक्षा, भारत और स्वीडन के अनुभव। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में विधि सम्मत शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल शक्ति नहीं बल्कि अदालतों को सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांत पश्चिम से ली गई औपनिवेशिक शासन उपरांत अवधारणा नहीं है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ रहा है।
4: इटली में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट वाले शहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड और हंगरी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रांस और जर्मनी में ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पेरिस में भी हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन

0: के अनुसार 21 जून से यूरोप में 1,300 से अधिक मृत्यु भीषण गर्मी से हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि यूरोप अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जहां तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मात दी। दो घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें पहले 1-1 से बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मोरक्को ने पेनल्टी में जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। इससे पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 की जीत के बाद ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। गैब्रियल मार्टिनेली ने चोट के आखिरी क्षणों में विजयी गोल दागकर 5 बार के चैंपियन ब्राजील को राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में एक नई उपलब्धि दिलाई। एक दूसरे मुकाबले में पैराग्वे ने अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को 4-3 से मात दी। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में ये जर्मनी की पहली हार है। इस जीत के साथ ही पैराग्वे विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। भारत ने वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप राहत कार्यों को तेज किया। और मोरक्को, पराग्वे और ब्राजील फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म केदारनाथ के एक गीत के साथ। इस गीत को अपनी आवाज दी है देव नेगी ने, संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत का संगीत तैयार किया है राघव और तनिष्क बागची ने, बोल लिखे हैं नैना माथुर और तनिष्क बागची ने, और इस गीत में अपनी आवाज़ दी है राघव, तनिष्क बागची और आशीष कौर ने।

जरा हटके जरा बचके। आप सुन रहे थे इस फिल्म में अरिजीत सिंह और सचिन जिगर को। गीत का संगीत था सचिन जिगर का और बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी के स्वरों में।

अरिजीत सिंह और निखिता गांधी को सुना आपने। फिल्म का नाम था वॉर दो। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गदर दो से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

अरिजीत सिंह और पलक मुच्छाल को सुन रहे थे आप फिल्म रुस्तम में। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाजों में फिल्म धुरंधर से।

सैयद कादरी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है वनवास और इसी गीत के साथ ही अब वक्त है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। सुबह के 11 बजे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

नमस्कार दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। कभी कोई मीठी याद, कभी कोई सीख, तो कभी कोई मजेदार सा किस्सा। तो भाई, ऐसी ही कुछ खास बातें, कुछ खास गाने अपने किसी खास तक पहुंचाने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ कार्यक्रम में। और जल्दी से उठाइए अपना फोन और डायल करिए हमारा नंबर जो कि है 0522-2238-825। तो भाई, हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। तब तक आपके लिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: तो भाई हमारे श्रोता भी बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि कब उनका फोन लगे और कब वो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं और सुने अपने फरमाइशी गीत। तो जल्दी से जुड़ जाते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर के साथ। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, अपना परिचय दें।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: राकेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत, बताएं कैसे हैं आप
1: जी। बहुत बढ़िया हैं, और जो है आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जुड़ जाता हूँ आपके प्रोग्राम में, तो फिर मैं जुड़ गया तो मैंने कॉल लगा दिया।
0: चलिए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा करा आपने और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात।
1: ये कि मैं पहला कॉलर बन गया आज की इस में, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन।
1: हजारों लोग जो है ट्राई पे होते तो हजारों लोगों के बीच मेरा पहला कॉल होने सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही हमारी भी सौभाग्य की बात है कि हजारों लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए इतना ज्यादा ट्राई करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से बता दे राकेश जी की गाना कौन सा सुनेंगे आज।
1: फिल्म का नाम है मोहब्बत और गाने की बोल है दिल की धड़कन कहती है।
0: चलिए, आपकी पसंद का ट्रैक आप तक पहुंचा रहे हैं, हमें फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी जी, धन्यवाद।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। और साथियों, आपको हमसे बातें करने के लिए, अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए और अपने फरमाइशी गीत सुनने के लिए डायल करना है हमारा नंबर जो कि 0522-2238-825। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम के अगले कॉलर। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं संतोष कुमार मौर्य, ग्रामीण कोठावा हरदोई।
0: संतोष कुमार जी, अपने बारे में हमें बताएं कुछ।
1: जी मैम, खेती किसानी करता हूँ और कॉस्मेटिक की दुकान है। मेरी लड़कियाँ हैंडलूम वो जयपुर रक्त वाला करीब कालीन बनाती हैं।
0: अच्छा, तो मतलब काफी ज्यादा काम आप अकेले संभाल रहे हैं कुछ? हाँ
1: जी, मैं पूरा परिवार है वो संभाल रहा है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि मिलजुल कर कोई भी काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है ना, अपने अपनों की मदद से किसी भी काम को करना बहुत आसान हो जाता है ना।
1: जी
0: जी बिल्कुल। तो जल्दी से बताएं हमें आज की गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: फिल्म का नाम मुस्कान और तो मालूम नहीं है मैम।
0: चलिए, गाना हम आपको बता देते हैं आपके आपके रेडियो सेट तक ये गाना पहुंचाकर। चलिए, हमें फोन करने
1: तो
0: के लिए
1: कर लेना।
0: जरूर जरूर।
1: मेरा लड़का है आशीष कुमार मौर्य और मेरी लड़की है पारुल कुमकुम मौर्य और मेरी बीबी है मीना देवी मौर्य।
0: चलिए, आप सभी के लिए प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट तक हम पहुंचा रहे हैं। हमें फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 11:15 और ये वक्त कह रहा है कि हम जल्दी से जुड़ जाएं हमारे कार्यक्रम के अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: जी दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका बहुत स्वागत। अपना परिचय दे दे, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल दीदी जी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी
0: बेटा सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत। और आपका ये जो यूनिक सा परिचय होता है, यूनिक सा इंट्रोडक्शन होता है ना, इसके अगर आप अपना नाम नहीं भी लगाएंगे ना तो भी हमारे जितने भी लिसनर्स हैं सब समझ जाएंगे। बताएं कैसे हैं आप
1: जी? जी दीदी बढ़िया है, अच्छे समय मेहमानों की मकान घर बनवा रहे थे तो समय मिल जाता है तो आपसे बातचीत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि काम के साथ साथ मनोरंजन क्योंकि जीवन में बहुत ज़रूरी है, और रेडियो कैसा माध्यम है जिससे हम अपने काम के साथ साथ अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं, है ना?
1: ये बात तो बिल्कुल सही है दीदी जी, क्योंकि जब काम भी चलता रहता है और रेडियो भी चलता रहता है, ये मान लो कि ये कार्यक्रम हमसे कभी छूटता नहीं है। और हेलो मेरी पसंद गया।
0: हाँ।
1: ये फरमाइशी जितने भी कार्यक्रम आते हैं ये बहुत छोटे से मैं सुनता चला आ रहा हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप सब ऐसा इतना प्यार देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के। जल्दी से बता दे बेटा सिंह जी कि आप गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम रहेगा तुम बिन और गीत की बोल रहेगा तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। दो चार मेरे मित्र हैं उनको अगर
0: जरूर
1: ज्यादा सो तो बोल दूं।
0: जरूर जरूर
1: जी। सबसे पहले हमारे मांगीला चंदेल साहब हो गए, फूलचंद मनकारी से हो गए, जितेंद्र पाल हो गए, दिनकर सिंह चित्रकूट धाम से हो गए, मनीराम पाल हो गए, और जितने हमारे श्रोता सुन रहे सर लाइव सभी लोग के लिए।
0: चलिए बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद का ट्रैक पहुंचा रहे आपके रेडियो सेट तक, हमें फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया।

0: साथियों, लखनऊ का मौसम इस समय बेहद खुशनुमा बना हुआ है और ऐसे खुशनुमे मौसम में अगर चाय की चुस्कियां अपनों का साथ और मनपसंद गीतों का आनंद मिल जाए तो बस क्या ही कहने। तो भाई, चाय की चुस्कियां तो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपके पसंदीदा गीत जरूर आप तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको डायल करना है हमारा नंबर जो कि 0522-223-8825। और ये वक्त कह रहा है कि हम जल्दी से जुड़ जाए हमारे आज के कार्यक्रम के अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: मैम
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैम गुड मॉर्निंग, मैं पूनम बोल रही हूँ।
0: वेरी गुड मॉर्निंग पूनम जी, आपका हमारे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे में बहुत स्वागत।
1: जी मैम, थैंक यू सो मच। और आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आपसे बात हो रही है और बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है आज।
0: जी बिल्कुल, हमारी भी आज बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है, इसलिए जल्दी से पहले बताइए कि आप कैसी हैं।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए बहुत बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि चाय की चुस्की और अपनों का साथ, ये तो बिल्कुल सही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और पसंदीदा गाने साथ में अगर मिल जाएं, पसंदीदा गाने अगर सुनने को मिल जाएं तो भाई क्या ही कहने, है ना।
1: तो और ही सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम आप कह रही हैं।
0: मौसम काफी खुशनुमा इस वक्त लखनऊ का भी है, और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि थोड़ी सी कानपुर से बारिश हमारे लखनऊ में भी भेज दें।
1: जी हाँ बिल्कुल मैम, कानपुर से बारिश जरूर हम आपके यहाँ भेजेंगे। और भगवान जी से कह भी रहे हैं कि बस लखनऊ में आप जाइए, वहाँ बरसिए,
0: है ना। थोड़ा
1: मौसम ठंडा हो गया है।
0: हाँ हाँ, मौसम तो काफी खुशनुमा बना हुआ है यहाँ का भी, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है, बारिश के आसार भी पूरी तरीके से बने हुए हैं। पूनम जी फिलहाल हमें बता दीजिए कि गाना कौन सा सुनेंगी आप।
1: मैम गाना मैम गाना तो एक बहाना है, आपसे बात हो जाए बस यही मन में रहता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: गाना तो बता देती हूँ, फिल्म का नाम है खुदार, गीत के बोल है वो आँख ही क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, ये गीत सुना दीजिएगा।
0: चलिए,
1: और मैम आपकी ज्यादा तो कुछ दोस्तों के नाम देना चाहिए।
0: जरूर जरूर,
1: आप चाहे तो
0: जरूर जरूर।
1: पहले तो आप हैं, और मेरी दोस्त रिंकी पिंकी जी हैं, गुंजन तिवारी जी, अनु पांडे जी हैं, भगवान सिंह परमार जी, अविनाश जी हैं, ब्रह्म

0: चंपाल जी हैं, जयपाल भाई हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं और साथ साथ रमेश प्रजापति हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, जितने लाइव श्रोता सुन रहे हैं
1: सभी के लिए
0: कुछ तुम कहो कुछ हम कार्यक्रम में सभी को
1: शुक्रिया शुक्रिया हमें फोन करने के लिए।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। और चलिए कार्यक्रम में जल्दी से जुड़ जाते हैं हमारे आज के अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अरे वाह, क्या बात है प्रेम सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में कुछ तुम कहो कुछ हम कहे में बहुत स्वागत। आज मेरी बात आपसे पहली दफा हो रही है?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर आप जल्दी से बता दें कि आप करते क्या हैं प्रेम सिंह जी?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: अच्छा, और साथ में रेडियो को एंजॉय करते हैं?
1: हाँ जी, मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनते हैं। और आपको बताऊँ, आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ा रहता हूँ मैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन से

0: प्रोग्राम सुनते हैं आप आकाशवाणी लखनऊ के?
1: जी बिल्कुल, बरसात भी हो गई हमारे यहाँ पे, लहसुन सॉरी सोयाबीन की फसल लगाई है अभी हमने।
0: प्रेम सिंह जी, मैंने पूछा आप आकाशवाणी के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी ज़्यादातर मैं फोन इन प्रोग्राम सुनता हूँ, उसके अलावा जो जो फिल्म संगीत के जो आते हैं ना कार्यक्रम,
0: जी जी जी
1: उनको सुनते हैं, और जो जानकारी से भरपूर होते हैं इसे कार्यक्रम सुनते रहते हैं,
0: एंटरटेनमेंट के साथ में इन्फॉर्मेशन भी लेते रहते हैं।
1: जी बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बता दें कि गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: जी काफी तेज हवा चल रही है हमारे यहाँ, तो आप सुनवा दीजिएगा गाना लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से।
0: चलिए, बहुत ही प्यारे गानों की फरमाइश आप सब लगातार कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपके फरमाइशी गीत हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ, और इसी तरह हम आप तक भी पहुँचा रहे हैं आपकी पसंदीदा ट्रैक। हमें फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 11:32 और जल्दी से जुड़ जाते हैं हमारे आज के अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्ते। मीनू दीदी
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं, अपना परिचय दें।
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी। आपको
0: बहुत दूर से फोन मिलाया गंगाधर जी आपने हमें, इसके लिए तो पहली बात बहुत शुक्रिया।
1: आपका जो केंद्र लखनऊ के से मोहब्बत है हमको, उसी से मिलाते दीदी रोजाना।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप सब इतना प्यार देते हैं, हमारे प्रोग्राम भी ऑब्वियसली सुनते ही होंगे।
1: बहुत बढ़िया प्रोग्राम दीदी आपके।
0: जी शुक्रिया। गंगाधर जी बताएं कि आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: मैं एक रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा।
1: मंडी के ऑफिस में काम करता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: और फैमिली में दो बेटे, दो बुआएं हैं, मिसेस है, हमारे पोत्री है।
0: अरे वाह क्या बात है, मतलब फैमिली के साथ अभी रिटायरमेंट के बाद आप पूरा

0: टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। हाँ
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और जल्दी से बता देंगे गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: आज सच्चाई की ताकत में का काशी को देखा नहीं, मथुरा को देखा नहीं।
0: चलिए,
1: ये मोहम्मद अजीज और अमित कुमार की आवाज में थी दी
0: जी।
1: और मैं कुछ मित्रों का नाम लेता हूँ।
0: हाँ, जरूर ले लें।
1: हमारे खास अजीज दोस्त शाहरुल अंसारी साहब, भगवान सिंह जी, तुकाराम जाधव और संगीता बहन आशुतोष जी, और अपने गजराज जी लोधी जी,
0: जी
1: ये सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपको भी दीदी नमस्ते।
0: शुक्रिया शुक्रिया।

0: स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है सुबह के 11:36 और ये वक्त कह रहा है कि हम जल्दी से जुड़ जाए हमारे कार्यक्रम के अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: हेलो, मीनू दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन बात कर रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: बहुत स्वागत केसरी सिंह जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप पहले तो मैं ये बताएं कि भोपाल में इस वक्त मौसम कैसा है?
1: दीदी अभी बैरसिया में बारिश हो रही है हल्की हल्की, लगभग 30-40 मिनट हो गए कार्यक्रम शुरू हुआ, इसके पहले से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है।
0: अरे वाह क्या बात है। तो वही आप बारिश के आनंद के साथ साथ पे चाय की चुस्कियों और पकोड़ों का स्वाद ले रहे हैं या नहीं?
1: हाँ अभी तो दीदी दाल आज रोटी बनी है।
0: अच्छा,
1: और पकौड़े बनाएंगे अब, एक आध रोज में पकौड़े बनते हैं, और मतलब वो बेसन के और गेहूं के आटे और गुड़ मिला के चीला बनते हैं, हमारी भाषा में चीला बोलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और भाई उसके साथ अगर चाय हो और साथ ही साथ बारिश हो और साथ ही साथ कहीं आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम चल रहे हो तो क्या ही कहने, है ना?
1: हाँ दीदी, बस प्रोग्राम शुरू हुआ था जब मैं चाय पी कर ही ऊपर मतलब छत पे आ गया था, मैंने कि थोड़े एकांत में कार्यक्रम भी सुनेंगे और कॉल भी मिलाएंगे और मिल भी गया।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, देखिए आपने कोशिश करी और आपको आपकी कोशिश

0: कोशिश का रिजल्ट आपके सामने है। केसरी सिंह जी जल्दी से बता दे, गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: गाना सुनवा दीजिएगा दीदी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। और कहना चाहेंगे आप बहुत दिनों बाद दिन के शो में आए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। नाइट के प्रोग्राम में आपका नाम और आपकी प्रस्तुति सुनते रहते हैं।
0: शुक्रिया।
1: और इससे पहले आपने 2 साल पहले एक कार्यक्रम किया था न्यू ईयर पर, वो भी हमने सुना था, तब से हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
0: बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए हमारे प्रोग्राम्स को। केसरी सिंह जी, आपकी पसंद का ट्रैक पहुंचा रहा है आपके रेडियो सेट।
1: 3-4
0: जरूर जरूर जल्दी से जरूर लें।
1: सबसे पहले आप सुनेंगे राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी और सारून नूर अंसारी जी हैं। और हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप के सारे मेंबर सुनेंगे और हमारे रमेश प्रजापति जी।
0: शुक्रिया आप सभी के लिए। मेरा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और साथियों, हमें उम्मीद है कि गीतों का ये खूबसूरत सिलसिला आपके दिल को जरूर छू रहा होगा। और फिलहाल कार्यक्रम में घड़ी की सुइयां से कह रही कि हम जल्दी से जुड़ जाए हमारे आज के अगले कॉलर के साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम कृष्ण कुमार ग्राम पटुपुर से बात कर रहे हैं।
0: कृष्ण कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत। और अभी कुछ देर पहले हरदोई से हमारे साथ एक लिसनर जुड़े थे, उन्होंने बताया कि हरदोई में बारिश बहुत अच्छी हो रही है।
1: हाँ जी, बारिश बहुत अच्छी हुई है, तो 3 घंटे बारिश अब बूंदाबांदी अभी हल्की सी हो रही है।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो भाई, बारिश में क्या कुछ खास कर रहे हैं आप?
1: खास का बारिश में खेती बाती का काम होने वाला है, पानी का इंतजार था, पानी बढ़ गया है।
0: अच्छा, और खाने पीने में क्या खास कर रहे हैं?
1: खाने पीने में अरहर की दाल रोटी खाया है जी।
0: अरे वाह, क्या बात है। और उम्मीद है मुझे जरूर इस बात की कि अगर शाम तक बारिश होती रही ना तो चाय पकौड़े जरूर बनने वाले हैं।
1: बहुत गर्मी हुई थी, 2-3 दिन गर्मी में इंतहा हो गई थी।
0: बिल्कुल, ये बात तो सही है कि बारिश के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है हम सभी को। और साथ ही साथ
1: खेती का काम लेट होता वो भी हो जाएगा।
0: बिल्कुल, खेती के काम भी आसान होते, साथ ही साथ जो पशु पक्षी हमारे आसपास से पेड़ पौधे जो है, हाँ, उनको भी काफी ज्यादा राहत मिलती है बारिश होने से, है ना?
1: जी
0: बिल्कुल। जल्दी से बताएं गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: गाना फिल्म निकाह का दिल से अरमासों में बह गए, सभी लिसनर के लिए।
0: चलिए, आपकी पसंद
1: आवाज़
0: आपकी पसंद का ट्रैक आपको सुनवा रहे हैं हमें फोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: साथियों, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है सुबह के 11:48, और जो भी हमारे लिसनर, हमारे श्रोता, हमारे कॉलर्स हैं जो हम तक अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो जल्दी से डायल कर रहे हैं हमारा नंबर जो कि है 0522-2238-825, और जल्दी से जुड़ जाते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम विदिशा से शिवा लोहट आपसे बात कर रहा हूँ मैम।
0: उज्जैन MP से।
1: जी मैम, MP के हाल तो अभी बेहाल है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, बारिश हो नहीं रही है।
0: अच्छा,
1: बस इस बार से यही कामना है कि जल्द से जल्द बारिश हो और हमारे किसान भाइयों को
0: भी थोड़ी राहत मिले। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भाई गर्मी जो है वो अपनी एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, और हम तो फिलहाल इंसान हैं क्योंकि तो हम सब तो अपनी मर्जी से AC, कूलर, पंखों का इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरे हाल जो, जैसा कि आपने कहा कि जानवरों के हो रखे हैं, है ना, पेड़ पौधों के हो रखे हैं।
1: मैं तो समाज सेवा करता हूँ तो मेरे को मालूम है मैम, पक्षियों को दाना भी रखना होता है, पानी भी रखना होता है
0: क्योंकि
1: को भी चारा पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है मैम।
0: लोग
1: गाय तो पाल लेते हैं जब तक दूध देती है, जब तक उसकी सेवा करते हैं, फिर दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सब जो जानवर, हमारे पशु पक्षी हमारे चारों ओर हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो सब हमारे ही भरोसे हैं, है ना।
1: बिल्कुल मैम, और अब बरसा ऋतु में बहुत ही अच्छी ऋतु होती है तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें वृक्ष जरूर लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और समय समय पे अपना रक्त दान भी करते रहना चाहिए
0: मैम। बहुत अच्छी बात आपने कही। जल्दी से बता दें कि गाना कौन सा सुनेंगे शिवाजी आप?
1: मैम मूवी का नाम है मासूम, और गाने के बोल रहेंगे टुकुर टुकुर देखते हो क्या।
0: चलिए आपकी पसंद का ट्रैक पहुँचा दें आप तक।
1: जी मैम, कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं?
0: हाँ जरूर से।
1: जी हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, बदरुआ से हमारे मित्र रहेंगे पुरुषोत्तम कुमार जी, और तमाम सुनने वाले और स्पेशली आप मैम।
0: शुक्रिया हमें फोन करने के लिए शिवा जी। आपकी पसंद का ट्रैक।

0: साथियों आइए अब कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं हमारे आज के अगले कॉलर के साथ। हेलो
1: दोस्तों, इस समय आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और कार्यक्रम जारी है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और प्रोग्राम में आज आपके साथ है आरजे मीनू मैडम और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: चलिए बहुत स्वागत आपका पूरन वर्मा जी हमें कॉल करने के लिए और इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे आकाशवाणी लखनऊ का।
1: जी मैडम, क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से जो भी कुछ हमने बोला है तो आकाशवाणी लखनऊ सुन सुन के बोला मैडम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सब इतना सीखते हैं, इतना ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आकाशवाणी लखनऊ से
1: बात हो रही है मैडम।
0: जी बिल्कुल, हमारी भी आपसे काफ़ी समय बाद बात हो रही है। बताएं कि इस वक्त मौसम कैसा है?
1: मैडम मौसम कई सोता बोल रहे कि बारिश हो रही है, पर इधर तो ये मान लो गर्मी से बुरा हाल है और धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा।
0: बिल्कुल जैसे ही कह रहे हैं आपकी, सुनने में तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जब सब बता रहे हैं कि लिसनर्स हमारे बता रहे हैं कि यहाँ बारिश हो रही है, हरदोई में बारिश हो रही है और हमारे एमपी में बारिश हो रही है, तो सुन के कानपुर में बारिश हो रही है सुन के बड़ा लालच आता है ना।
1: जी, पर हमारे यहाँ धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो यहाँ धूप तो लखनऊ में नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा था अभी एक घंटे पहले तक, अभी क्या मौसम के मिजाज हैं ये तो मुझे नहीं पता स्टूडियो में आने के बाद। चलिए हमारी घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं पूरन वर्मा जी, तो जल्दी से मैं बता दी कि गाना कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है तलाश और गाने के बोल है तुमने कहा जब से हाय के लब मुस्कुराने लगे, और ये गाना सबसे पहले आप सुनेंगे मैडम।
0: शुक्रिया।
1: और मेरा दोस्त है मिंटू तिवारी जी है लखनऊ से, और रमेश प्रजापति जी है, अभिनाथ जी है, शिवा लोहार है और राहुल है, और तमाम श्रोता जी लाइव आकाशवाणी लखनऊ भगवान सिंह परवान तमाम श्रोता।
0: शुक्रिया मैं फोन करने के लिए पूरन वर्मा जी, ऐसी आकाशवाणी लखनऊ सुनते रहिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के भंडार अपने आप में भरते रहिए।

तो दोस्तों उम्मीद है गीतों और बातों का आज का हमारा ये सफर आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में कुछ अच्छे एहसास जरूर छोड़ गया होगा। याद रखिए जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हों, अच्छी सोच, पॉजिटिव नजरिया और अपनों का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। इसके लिए मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और अपने आसपास प्यार, अपनापन और उम्मीद की रोशनी फैलाते रहिए। और इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति दीजिए अपने रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, मीडियम वेव के मीटर पर ही आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे

0: प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी।
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रही, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो

0: को शीश झुकाना।
1: सीखो शीश झुकाना।
0: सीख हवा के झोंकों से लो।
1: सीख हवा के झोंकों से लो।
0: कोमल भाव बहाना।
1: कोमल भाव बहाना।
0: दूध तथा पानी से सीखो।
1: दूध तथा पानी से सीखो।
0: मिलना और मिलाना।
1: मिलना और मिलाना।
0: सूरज की किरणों से सीखो।
1: सूरज की किरणों से सीखो।
0: सूरज की किरणों से सीखो।
1: सूरज की किरणों से सीखो।
0: जगना और जगाना।
1: जगना और जगाना।
0: लता और पेड़ों से सीखो।
1: लता और पेड़ों से सीखो।
0: सबको गले लगाना।
1: सबको गले लगाना।
0: दीपक से सीखो जितना।
1: दीपक से सीखो जितना।
0: हो सके अंधेरा हरना।
1: हो सके अंधेरा हरना।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: सच्ची सेवा करना।
1: सच्ची सेवा करना।
0: जलधारा से सीखो आगे।
1: जलधारा से सीखो आगे।
0: जलधारा से सीखो आगे।
1: जलधारा से सीखो आगे।
0: जीवन पथ में बढ़ना।
1: जीवन पथ में बढ़ना।
0: और धुएं से सीखो हरदम।
1: और धुएं से सीखो हरदम।
0: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
2: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खो देंगे भाई, खो देंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
3: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
4: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
5: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
6: क्या
7: क्या
6: क्या?
4: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
6: कू कू।
4: नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।

0: हाँ यही करो तुम दोनों।
1: जो आज्ञा महाराज।
2: दम लगा के कू।
3: आयशा
4: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा पड़ा आराम। चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
3: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
4: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
3: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
4: काँ, काँ, काँ।
5: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: Bahia. Papiha na piye jabai.
1: Kaam, kaam, kaam. Aye, isne to bas rat hi pakad li.
2: Bau, bau, bau. अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी।

0: तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: हाँ हाँ, इसकी यही सजा हो।
2: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी। जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
3: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
5: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
3: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
3: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
3: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा।

0: बारिश बिन पानी।
1: हाय
2: क्या ये मर गया?

0: क्या है पता?
1: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
0: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
0: अरे
1: पपी है भाई।
2: पानी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। दिन के 12:30 हुए हैं। आप सुनिए सदाबहार नगमे।

साथियों, आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी सिनेमा के वो अमर गीत जो समय के साथ और भी खूबसूरत लगने लगते हैं।

सदियों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर बार सुनने पर दिल को एक नई ताजगी दे जाते हैं, और कार्यक्रम का अगला गीत भी कुछ ऐसी ही बात कहता है।

0: साथियों, कार्यक्रम में अब बारी है एक ऐसे गीत की जो प्यार की मासूमियत को शब्दों और धुन में पिरोए हुए है।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है

किशोर कुमार की आवाज़ को भी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे जीवन साथी में। आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, और भावनाओं की गहराई और मधुर संगीत, यही तो पहचान है सदाबहार नगमों की।

जीने की राह फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सौतन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे सावन कुमार ने और संगीत से संवारा उषा खन्ना ने। और इसी के साथ ही सदाबहार नगमों का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के

0: ने भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, आपको बता दें आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

शाम 5:10 पर युवा तरंग में धरोहर के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर आरपी सिंह की लोक गाथा। नई उड़ान कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:45 पर।

0: दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम अपराजिता, और कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अपराजिता। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे खरीफ मक्का की उन्नत खेती, इस विषय पर डॉक्टर प्रभाकर सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। दिन में 2:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में श्रोता आनंद लेंगे रविशंकर देहाती व साथी के गाए भोजपुरी लोकगीतों का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
1: 8700014242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को है। थोड़ी ही देर में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर के मिलक और बिलासपुर असेंबली हलकों में 690 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा,
2: विरासत को सम्मान देकर के कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है।
1: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाब्तगियों के इल्जाम में गिरफ्तार 8 अफराद को 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में रखने का हुक्म दिया गया है। केस की समाअत कल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रजत वर्मा के सामने हुई। तमाम मुलजमीन को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। फिलहाल पुलिस ने मुलजमीन का रिमांड तलब नहीं की है। इस मामले की अगली समाअत 13 जुलाई को होगी। इस दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी वकील इस मामले में नामजद मुलजमीन की नुमाइंदगी नहीं करेगा। दरी असना सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मफाद आम्मा की अर्जी की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें श्रीराम मंदिर भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात में माली बेजाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। दरख्वास्त में अदालत की निगरानी में होने वाली तहकीकात और माली बेजाब्तगियों के मुकम्मल ऑडिट का मुतालबा किया गया है। जस्टिस एम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने दरख्वास्त की उजलत पर सवाल उठाया और कहा कि गर्मियों की तातीलात के बाद अदालत दोबारा खुलने पर इसे दर्ज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल पीलीभीत में 579 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने पीलीभीत समेत रियासत के तमाम अज़ला की तरक्की को तेज़ करने के लिए आलमी मेयार का बुनियादी ढांचा बनाया है। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर मुमलकत जितिन प्रसाद ने कहा कि रियासती हुकूमत की अवामी बहबूद की पॉलिसियों और गुड गवर्नेंस की वजह से पीलीभीत तब्दील हो रहा है। पीलीभीत के बाद वज़ीर आला ने भामाशाह की यौम पैदाइश के मौके पर मुरादाबाद में मुनक़द एक प्रोग्राम में 365 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने मगरबी उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल जंगी यादगार त्रिशूल इंडियन डिफेंस म्यूज़ियम का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने मुरादाबाद में तरक्याती कामों, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के ताल्लुक से एक डिवीज़नल जायजा मीटिंग में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दीं। रियासती हुकूमत ने ई रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से मुतालिक अपने साबका हुक्म को फौरी असर से मनसूख कर दिया है। स्टैंप और कोर्ट फीस व रजिस्ट्रेशन के वज़ीर ममलकत रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह फ़ैसला एडवोकेट और डीड राइटर्स की खदशात और मफादात की रोशनी में किया गया है।
3: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम किस्ते बन गए। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ उसको हम निरस्त करते हैं।
1: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कल 3 जबानों की पॉलिसी पर रहनुमा खतूत जारी किए। बोर्ड ने कहा कि मौजूदा दर्जा 10 बैच को नई जबान की पॉलिसी पर अमल करने की ज़रूरत नहीं होगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि दर्जा 7, 8 और 9 के तलबा को दर्जा 10 तक पहुंचने पर उनकी तीसरी जबान

0: में बोर्ड के इम्तिहानात देने की ज़रूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि क्लास के लिए मुनासिब वसायल बरवक्त दस्तियाब कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इम्तिहान 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। गुज़िश्ता 36 घंटों में रियासत के कुछ अज़ला में हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। पीलीभीत ज़िले में कल रात से हो रही बारिश से वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर समेत कुछ दूसरे अज़ला में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज़ में रियासत में मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमा ने आज रियासत के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। दिन के 1:15 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम अपराजिता।

0: सगियों, आपका अपना कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं श्वेता
1: और मैं हूँ इरम। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: इरम जी, गर्मी ने तो लगता है इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे आज मौसम थोड़ा खुशनुमा जरूर हुआ है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। कल तक देखो गर्मी का आलम ये था कि घर से बाहर जाना मतलब किसी महास पर जाने जैसा था।
0: बिल्कुल, और पहाड़ों पर तो इस बार इतनी भीड़ थी कि क्या बताया जाए।
1: लगता है तुमने सोशल मीडिया पर रील्स देखकर हिम्मत नहीं की।
0: कह सकती है भाई, सोशल मीडिया पर लगातार यही आ रहा था तो हमने भी प्लान नहीं बनाया।
1: वैसे अक्सर कभी कुछ सच होता है तो कभी कुछ झूठ भी होता है।
0: हाँ, और आज तो देखिए विश्व सोशल मीडिया दिवस भी है। जहाँ आज से कुछ साल पहले कुछ ही लोग इसका इस्तेमाल करते थे, वहीं आज शायद ही कोई होगा जो इस पर एक्टिव ना हो।
1: सही कहा, सोशल मीडिया कई मायने में अच्छा भी है तो कभी कभी इसके नुकसान भी हैं।
0: बस हमें इससे सोच समझकर दोस्ती करनी होगी जिससे हम किसी भी तरह के स्कैम में ना फंसें।
1: और श्वेता, आज तो हम अपनी सखियों से भी बात करने वाले हैं अपने कार्यक्रम हेलो अपराजिता में।
0: बिल्कुल, तो क्यों ना आज उनसे सोशल मीडिया पर ही चर्चा कर ली जाए, क्या कहती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, जरूर करना चाहिए। लेकिन अभी रुकते हैं, एक अंतराल के बाद मिलते हैं। और सखियों, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इरम जी, आज जैसा कि हमने अपनी सखियों से वादा किया था कि हम उनके लिए हेलो अपराजिता कार्यक्रम लेकर आएंगे, तो चलिए लेते हैं अपनी सखियों की कॉल्स और जानते हैं उनसे कि सोशल मीडिया उनके जीवन को कितना प्रभावित करता है।
1: हाँ हाँ, चलो लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं कौन है हमारे साथ।
7: नमस्कार, हेलो अपराजिता में आपका स्वागत है।
8: हेलो नमस्कार,
7: क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं?
8: मैं मरियम बोल रही हूँ, लखनऊ से बात कर रही हूँ।

0: मरियम जी क्या करती हैं आप?
1: मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, बट थोड़ा सा फैशन डिजाइनिंग कोर्स करा है तो घर पे चलाती हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं आप?
1: हाँ करती हूँ।
0: तो ये बताइए कि सोशल मीडिया से आपको क्या कुछ सीखने को मौका मिला? आप एक गृहिणी हैं, थोड़ा बहुत आप सिलाई कढ़ाई भी करती हैं।
1: बहुत सी रील्स ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आता है, वो हमें थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से भी गेन कर लेती हूँ। मैं नई डिशेस होती हैं वो बनाना सीख लेती हूँ।
0: तो आप नई डिशेस बनाती हैं?
1: जी,
0: कोई नई रेसिपी जो आपने बनाई हो?
1: बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारा तरीका अलग होता है बनाने का। हो चीज एक ही होती है लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। कोई भी चीज, खीर है या कोई ऐसा आइटम जो हमें लगता है कि हम एक नए तरीके से बनाएं, इसलिए सोशल मीडिया का यूज करती हूँ मैं।
0: अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर मान लीजिए सोशल मीडिया के जैसे कई सारे फायदे भी हैं तो कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे कोई खबर है या एक ऐसा मैसेज आ जाता है सोशल मीडिया पे, तो उसकी सच्चाई जानने का आप प्रयास करती हैं, या आपको लगता है जैसे बहुत सारी न्यूज भी होती है ना, जैसे कभी कभी कुछ आता है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या कभी कुछ
1: जी,
0: भी सर्फिंग करते टाइम, तो
1: नहीं,
0: आप
1: मैं इन सब चीजों को इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि गृहिणी हूँ तो बस इन्हीं
0: मरियम
1: सब चीजों को लेके चलती हूँ।
0: जी आप जल्दी से हमें हमारे श्रोताओं को भी बताइए कि आपका कोई पसंदीदा गाना हो जो आप अक्सर गुनगुनाती हो या आप सुनना चाहें।
1: मेरा नाम जोकर से है, जीना
0: जी
1: यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जा

0: ये नगमा जिंदगी से जुड़ी कितनी गहरी बात कह जाता है, और जब बात लोगों से जुड़ने की हो तो आज के दौर में सोशल मीडिया भी एक अहम भूमिका निभा रहा है।
1: देखिए इरन, अभी हमारी कॉलर मरियम ने हमें कितनी अच्छी बात बताई, और साथ ही सोशल मीडिया से जानकारी लेकर वो कई तरह के व्यंजन भी बनाती हैं। आपका क्या ख्याल है, आप भी ऐसा कुछ ट्राई करती हैं कि नहीं?
2: बिल्कुल करते हैं, और सोशल मीडिया पर कई तरह की नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो मैं अक्सर उन्हें ट्राई भी करती हूँ। क्या तुम करती हो?
1: जी मैं भी ट्राई करती हूँ भाई, हमें सोशल मीडिया से कई चीज

0: सीखनी चाहिए। और अब बढ़ते हैं चलिए कार्यक्रम में आगे और लेते हैं अपनी अगली कॉलर और जानते हैं कि सोशल मीडिया ने उनके जीवन में क्या नया जोड़ा।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: कहाँ से बात कर रही हैं और क्या नाम है आपका?
1: मैं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव हूँ और मैं लखनऊ में रहती हूँ, वन स्टॉप सेंटर में साइको सोशल काउंसलर हूँ।
2: अच्छा, तो ये बताइए कि एज अ साइकोलॉजिस्ट, कल जो सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ, प्राइवेसी और सुरक्षा पर कैसा असर डालता है?
1: देखिए, कोई भी अगर चीज है, जैसे हमने सुना है आमन जिंदगी में कि किसी भी चीज की अति बहुत खराब होती है, तो वही हाल सोशल मीडिया का भी है। देखिए, सोशल मीडिया से काफी चीजें सकारात्मक भी प्रभाव डाला है, लेकिन अगर हद से ज्यादा उसका यूज किया जाए तो वो मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा है, क्योंकि जो लोगों को सुबह से शाम तक रील देखने की आदत लग गई है और दिन रात लोग रील देखते रहते हैं, उसकी वजह से उनका स्लीपिंग टाइम जो है वो बाधित होता है, क्योंकि उसमें हर तरीके की रील होती है। आप जिस तरीके की रील देखनी है वो आपकी मनस्थिति पे कैसा असर डाल रही है, क्योंकि उसमें जो भी लोग रील बना रहे हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया को जरिया बनाया, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो इमेजिन करने लगते हैं कि हमारी भी लाइफ ऐसी ही हो। तो उससे क्या होता है कि जो लोग मिडिल क्लास के हैं या जो लोग ऐसी लग्जरी लाइफ नहीं यूज कर सकते हैं या उनके पार्टनर के साथ उनका तालमेल बहुत ठीक नहीं है, तो वो फिर उनको और ज्यादा डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। और रही सुरक्षा की बात और प्राइवेसी की बात, तो देखिए अब लोगों ने एकदम इसको चूंकि जरिया बना लिया है पैसा कमाने का, तो अपनी पूरी पर्सनल जो लाइफ है, डेली रूटीन है, उसको उन्होंने उसमें शो करना स्टार्ट कर दिया है, उसी के ऊपर रील बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं एक जो प्राइवेसी है, या ऐसे भी जो लोग अपना डेली रूटीन का अगर ब्लॉग बनाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, उसका भी उन्होंने पूरा रील बनाना डालना, फोटो है कुछ है, तो ये सब क्या है कि इतना ज्यादा इस चीजों की अति हो गई है कि अब जब आदमी एक रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जा रहा है तो अगर खाना सर्व हो रहा है, लंच सर्व हो रहा है, डिनर सर्व हो रहा है, तो नहीं नहीं अभी कोई छुएगा नहीं, हाथ नहीं लगाएगा, पहले इसकी फोटो क्लिक होगी क्योंकि वो अपडेट होनी है। ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी को और आपको ये दिखा रहा है कि आपको कितनी लत लग गई है अपनी हर चीज को शो ऑफ करने की, और अपनी जो डेली लाइफ है, जो भी आपकी जिंदगी में चीजें हो रही है, वो सब पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या चीज हमें दिखानी है, क्या चीज हमारे लिए दिखाने से हानि हो सकती है, तो आदमी इसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। कभी कभी अपने को फेमस करने के लिए, वायरल करने के लिए आदमी अपनी हर लिमिट क्रॉस कर रहा है।
2: बिल्कुल,
1: बच्चे भी रील देख रहे हैं, फोन उनके हाथ में भी रहता है, और ऐसी ऐसी रील कुछ में रहती है जो बच्चों के ऊपर भी बहुत गलत प्रभाव डाल सकती
2: है। ये तो देखिए आपने कुछ नेगेटिव पॉइंट बताए, लेकिन सोशल मीडिया अगर हम बात करें कि कुछ पॉजिटिव भी है, कि आपको कुछ लगता है कि आपकी जिंदगी में या आपके काम में ये कुछ मददगार भी होता है सोशल मीडिया?
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया देखिए हमने कहा ना कि अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल, चाहे वो कोई ऐप हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर उसका लिमिट में इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होता है। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया भी है कि अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का।
2: बिल्कुल इरन जी, देखिए उन्होंने हमें दोनों ही एस्पेक्ट बता दिए, सोशल मीडिया पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हमारे जितने भी श्रोता होंगे वो आपको सुनेंगे और बिल्कुल आपसे प्रेरित होंगे। और जल्दी से आप हमें एक अपना कोई फेवरेट गाना बता दिए जो हम बजा दें आपके लिए।
1: गाने तो ऐसे बहुत है, लेकिन एक

0: कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकात हमारे जीवन पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया भी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का ऐसा ही एक माध्यम बन गया है। और इसी संदर्भ में एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में हमारी कॉलर डॉक्टर सोनल ने हमें बताया कि सोशल मीडिया पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से प्रभाव डालता है।
1: बिल्कुल, और समझदारी इसी में है कि हम इसका पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करें, ना के नेगेटिव रूप में।
0: और आओ जानते हैं हमारी अगली कॉलर सोशल मीडिया से कितना प्रभावित है।
1: चलिए लेते हैं अगली कॉल।
2: हेलो।
3: हाँ हेलो,
2: नमस्कार। हेलो अपराजिता, मैं आपका स्वागत है। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं?
3: मैं अर्शी लखनऊ से बोल रही हूँ।
2: क्या करती हैं अर्शी जी?
3: मैं हाउसवाइफ हूँ।
2: एक हाउसवाइफ क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है?
3: हाँ बिल्कुल करते हैं, और इसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सोशल मीडिया मेरे हिसाब से एक गहरे समंदर की तरह है कि जिसमें से आप जो लेना चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या लेना चाहते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अच्छा अर्शी जी, ये बताइए कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ, या आपने कभी सुना आपके किसी महिला मित्र या किसी के साथ भी ऐसा हुआ कि किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उनके साथ कुछ धोखा हुआ या कुछ ठगी ऐसा हुआ? कुछ ऐसा आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो।
3: हाँ देखिए, इस तरह से जो अनजान लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो बहुत सोच समझ करके उनको एक्सेप्ट करें। प्रोफाइल अगर संदिग्ध लग रहा हो तो पहले तो आप उसे एक्सेप्ट ही ना करें। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिसके जरिए आप जान सकें, या आपका खुद कोई जानने वाला, तब आप कोशिश करें कि अनजान लोगों को ऐड ही ना करें। और अगर आपको करना है क्योंकि आप उसको बेटर वे में यूज करना चाहती है, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है प्राइवेसी वाली, वो चीजें आप शेयर ना करें। और जैसे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तुरंत लोग लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं, तो शेयर ना करें। तो इस तरह से जो ठगार लोग बैठे होते हैं, जो नजर रख रहे हैं, तो आप उस तरह के फ्रॉड से बच सकेंगी। और बाकी जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है प्राइवेसी वाली, उस पर आप जरूर ध्यान दें कि वो आप किसी भी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें।
4: आपने बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, और बहुत हमें अच्छा लगा।

0: छोटी छोटी उम्मीदों और सपनों की तरह ही हमें नई चीजें सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बात से जुड़ी है एक महत्वपूर्ण सीख जो हमें हमारी कॉलर ने भी दी।
1: देखिए इरन, हमारी सखियां कितनी समझदार हैं। उन्हें पता है कि सोशल मीडिया से हमें समझदारी के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए।
2: बिल्कुल श्वेता, अभी हमारी कॉलर ने भी देखो बताया कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आए तो हमें सोच समझ कर ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए।
1: हाँ इरन जी, सोशल मीडिया हमें जानकारी तो देता है लेकिन उस जानकारी की सच्चाई परखने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। और अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कॉलर की तरफ।
3: हेलो।
4: हेलो, कहाँ से बात कर रही हैं आप और क्या नाम है आपका?
3: मैं गोमती नगर लखनऊ से बात कर रही हूँ और मेरा नाम गुनिका है।
4: गुनिका, आप क्या करती हैं?
3: मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 10th में हूँ, अभी अपने बोर्ड की तैयारी कर रही हूँ।
4: वो बोर्ड होंगे आपके तो उसके लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करिएगा अपने बोर्ड्स की।
3: थैंक यू।
4: और गुनिका एक चीज ये बताइए कि सोशल मीडिया तो आप यूज करती ही होंगी?
3: हाँ करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, जब मेरा बोर्ड्स हो जाएंगे तब मैं वापस से अटेंड करूंगी।
4: चलिए अच्छा, मुझे ये एक चीज बताइए, जैसे आप जब भी यूज करती है सोशल मीडिया, कोई अनजान हो वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे या उसकी रिक्वेस्ट आए आपके पास, तो आप क्या तुरंत एक्सेप्ट करती हैं या आप थोड़ा जानती हैं परखती हैं फिर एक्सेप्ट करती हैं?
3: मैं तुरंत तो एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले जिस भी व्यक्ति की रिक्वेस्ट आई हुई होती है तो उसको मैं पहले उसके अकाउंट जिससे उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी होती है मैं उसके पास जाती हूँ, अकाउंट के पास, और फिर मैं देखती हूँ कि कोई मेरा दोस्त या फिर मेरे कोई रिलेटिव हो जो उनको फॉलो कर रहे हो, तो अगर

0: फॉलो कर रहे होते हैं, तो एक बार को मैं एक्सेप्ट करने का सोचती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स से भी एक बार पूछ लेती हूँ कि मुझे ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ज्यादा अनुभव होगा, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ।
1: अच्छा ये बताइए कि आप भी क्या लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में पड़ती हैं?
0: जी नहीं, मेरे अकाउंट पे जो है वो मेरे माता पिता हैंडल करते हैं, तो उस पे मैं कुछ भी ऐसे डालती नहीं हूँ। जो भी मतलब काम ऐसे मैं सोशल वर्क कुछ करती हूँ तो बस वही मैं डालती हूँ। लाइक्स और फॉलोअर्स कुछ नहीं है, तो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे सिर्फ मेरे दोस्त और मेरे रिलेटिव्स हैं।
1: चलिए, अच्छा हमें जल्दी से अपना कोई एक प्यारा सा गीत बता दिए जो आप सुनती हो या आपको अच्छा लगता हो, जो हम अपने श्रोताओं के लिए भी बजा दें और आपके लिए भी।
0: उनसे मिली नजर,
1: अच्छा, उनसे मिली नजर थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे आप?
0: उनसे

0: श्वेता, नज़रों का असर तो हमने इस गीत में सुना, लेकिन आज की युवा पीढ़ी पर सोशल मीडिया का असर भी कुछ कम नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे युवा इसे समझदारी से अपना रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसकी एक अच्छी मिसाल है हमारी कॉलर, जिन्होंने बताया कि वे क्लास 10th में हैं और वे समझदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं।
1: बिल्कुल। और युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताती है और उसके नए नए रूपों को सबसे पहले अपनाती है, वो अगर इसका सही इस्तेमाल कर रही हैं तो हमारा समाज भी सही दिशा पाएगा, है ना?
0: बिल्कुल। और युवा हो या बच्चे, अगर उनकी सोच सही होगी तो देश का भविष्य भी संवर जाएगा। युवाओं की बात आई तो मुझे कुछ दिन पहले हुए उस हादसे की याद आ गई श्वेता, जो लखनऊ के अलीगंज में हुआ था।
1: जी रमजी, बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। अग्निकांड की तस्वीरें जब हमें इतना विचलित कर रही थीं, तो सोचिए उन बच्चों ने कैसे इसका सामना किया होगा।
0: बिल्कुल। ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभिभावक इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुरक्षा का क्या इंतज़ाम है, ये ज़रूर देख लें।
1: बिल्कुल। और बच्चों को भी कुछ बातें पहले से समझा दीजिए, जैसे आग या ऐसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो क्या करें। अब जैसे धुआं भरने पर कोई गीला कपड़ा मुंह पर या नाक पर बांध सकते हैं।
0: सही कह रही हो। और साथ ही 101 या 112 पर कॉल करके दमकल विभाग को सूचित करें।
1: बिल्कुल।
0: किसी इमारत में आग अगर लग जाती है तो उस स्थिति में अलार्म एक्टिव कर दें और दूसरों को भी सचेत करें।
1: हाँ, और ऐसी स्थिति में लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का ही प्रयोग करें, बिजली के उपकरण बंद कर दें, ज्वलनशील केमिकल, माचिस, लाइटर और गैस सिलेंडर को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
0: बिल्कुल।
1: और एक चीज़ और याद रखिए कि ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी पैनिक मत होइए और दूसरों को भी घबराने ना दें। और इरम जी, एक चीज़ और थी कि हमारी जो कुछ सखियां हैं, कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो हमको कॉल नहीं कर पाए या हम उन समय की कमी के कारण उनका कॉल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे सोशल मीडिया के थ्रू अपने फरमाइश हम तक भेजी है, तो हम उनके लिए ख़ास तौर पर एक गीत प्ले करने जा रहे हैं। तो आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: मुलाकात भले ही इतनी सी ही हो, लेकिन साथ ही आपसे अगले किसी कार्यक्रम में जरूर फिर से जुड़ेंगे। तब तक दीजिए मुझे यानी श्वेता
1: और इरम को दीजिए अनुमति।
0: सखियों नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपराजिता। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम जवानों के लिए।

देश की सीमाओं पर हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती का डटकर सामना करने वाले हमारे वीर सैनिकों को जय हिंद।

फौजी साथियों, आपके साहस, आपके अनुशासन, समर्पण और त्याग की बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित और निश्चित जीवन जी पाते हैं। पूरा देश आपके इस अमूल्य योगदान के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए, अपनी रेडियो होस्ट मीनू के साथ। और आप भी अपने फरमाइशी गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी गीत, तो हमें ईमेल लिख भेजिए आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। हमें इंतज़ार है आपके ईमेल्स का, आपके फरमाइशी गीतों का। फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

बॉर्डर फिल्म का गीत आपने सुना रूप कुमार राठौर की आवाज में। और कार्यक्रम में वक्त है हमारे आज के पहले ईमेल को शामिल करने का।

पर ये ईमेल हमें आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और ये मेल लिखने वाले हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और ये लिखते हैं भारत के रखवालों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना और रक्षा प्रणाली में जुटे सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह रहे, आप हैं तो हम हैं। फौजी गुरमीत सिंह, कोट सदर खान।

आप सुन रहे हैं फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जवानों के लिए। और साथियों, अगर आप ने भी किसी विशेष गीत की फरमाइश हम तक भेजी है तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हो सकता है कार्यक्रम का अगला गीत आपकी ही पसंद का हो। फिलहाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारे आज के अगले ईमेल को, जो कि हमें लिख भेजा है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्य रामसागर शाहू रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति। और ये सुनना चाहते हैं सनम बेवफा फिल्म का गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर आप तक पहुँचा रहे हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

किसान रेडियो क्लब से हमारे पास आ चुका है हमारा आज का अगला ईमेल ग्राम व पोस्ट अलोहा जिला खीरी से। ये ईमेल हमें भेजा है विजयपाल यादव, शुभम, ब्रिचा, शिखा, गुड़िया, बबलू यादव और विजय पांडे जी ने। साथ ही इन्होंने एक मैसेज भी हम तक भेजा है, वो है कि माता पिता की दुआएं जीवन का ऐसा उजाला है जो हर कठिनाई में नई राह दिखाती है। उनका आशीर्वाद साथ हो तो अंधेरों के बीच भी मंजिल साफ दिखाई देने लगती है। बिल्कुल सही बात, बहुत सही संदेश पहुंचाने की कोशिश विजयपाल जी आपने करी है हमारे श्रोताओं तक। हमें ईमेल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही कार्यक्रम में एक और ईमेल को भी हम शामिल करेंगे और ये ईमेल हमें लिख भेजा है विजयलक्ष्मी कुछ

कुशवाहा जी ने सांडी जनपद हरदोई से। और लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

तो फौजी साथियों, हमारा आज का ये कार्यक्रम जवानों के लिए अब अपनी समाप्ति पर है। उम्मीद है आज के गीत और बातें आपके कुछ पल और भी सुखद बना पाए होंगे। आप जहाँ कहीं पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर, तपते रेगिस्तान में, घने जंगलों में, या देश की किसी भी सीमा पर, हमारी शुभकामनाएं और देशवासियों का स्नेह सदा आपके साथ। इसी शुभकामना के साथ मुझे यानी मीनू को दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति। फौजी साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडएसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरन

0: वाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने एफएटीएफ के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी

0: 747 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह से भेंटवार्ता। विषय है खरीफ मक्का की उन्नत खेती और इनसे भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ में जहां मक्का उत्पादन की योजना बनाए हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभाकर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ मक्का उगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। कहना चाहूँगा कि मक्का की खेती में सबसे पहले भूमि का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि वर्षा ऋतु में मक्का की खेती की जाएगी, इसमें भारी वर्षा होने के बाद यदि आपके खेत में जल निकास का प्रबंध नहीं होगा तो फसल पीली हो जाती है और उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जहाँ पर बलुई दोमट भूमि है वह बहुत ही उपयुक्त होती है।
1: सबसे अच्छी
2: भूमि बलुई दोमट भूमि मक्का की खेती के लिए मानी जाती है।
1: और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
2: खेत की तैयारी में जैसा कि किसान भाई पहले से भी जानते हैं, एक जुताई उनको गहरी करनी चाहिए और इसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या रोटावेटर से कर लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बुआई का उपयुक्त समय क्या है खरीफ मक्के का?
2: इस समय देखिए जून का हमारा जो है द्वितीय पखवाड़ा चल रहा है और यह द्वितीय पखवाड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है बुआई का, तो 10 जुलाई तक बुआई पूरी कर लें
1: खरीफ मक्के की। बस ये कि मानसून का इंतजार है, उसके बाद तुरंत बुआई कर दें?
2: हाँ, मानसून जैसे ही उनको मिले या उनके पास पानी का साधन हो तो पलेवा करके बुआई कर दें ताकि मानसून आने पर फसल स्थापित हो जाए।
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देने की स्थिति में हैं खरीफ मक्के की?
2: वर्तमान समय पर 2 तरह की प्रजातियां प्रचलित हैं। एक प्रजाति है जो है संकर प्रजातियां हैं और दूसरी जो हमारी संकुल प्रजातियां हैं। संकर प्रजातियों में सबसे अच्छी प्रजातियों की जो बात है उसमें गंगा 11 अच्छी प्रजाति है। 100 दिन से लेकर 105 दिन में होती है। इसका उत्पादन जो है 45 से 50 कुंटल तक मिलता है प्रति हेक्टेयर और 20-25 कुंटल प्रति एकड़ मिलता है
1: जी।
2: सीड टेफ 740 ये भी 110 दिन से लेके 115 दिन की प्रजाति है। 65 से 70 कुंटल उत्पादन यह देती है
1: ढाई एकड़ में।
2: और दूसरी प्रजाति हमारी NMH 920 है, ये भी 110 से 115 दिन की प्रजाति है।
1: अच्छा,
2: 1 एकड़ में लगभग 30 कुंटल तक देती है।
1: और इसके अलावा प्रजातियां
2: LG 3281 90 से 95 दिन में होने वाली फसल है ये, और यह जो है करीब 25 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक का उत्पादन 1 एकड़ में देती है। इसके साथ साथ आपका PSC 740 एक वैरायटी है, 110 से 115 दिन की है। यह प्रजात जो है आपकी करीब 20 कुंटल से लेकर 25 कुंटल के बीच में 1 एकड़ में उत्पादन करने की क्षमता रखती है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल संकर प्रजातियों में तो ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो 35 से 40 कुंटल तक पहुंच रही हैं।
2: जी, इसमें जो है हम NMH 1920 का नाम रख सकते हैं, ये अच्छी प्रजाति है। साथ ही साथ हमारी कुछ बहुत ही पॉपुलर प्रजातियां हैं जैसे पूसा संकर मक्का 5। यह प्रजात 80 से 85 दिन में होती है लेकिन यह 14 से 18 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है
1: जी।
2: इसके बाद HQPM 8 105 से 110 दिन में होने वाली प्रजाति है, यह 20-22 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे रही है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रही संकर प्रजातियां, संकुल प्रजातियां जो हैं जो अच्छी पैदावार दे सकती?
2: संकुल प्रजातियों में सबसे अच्छी प्रजाति हमारे पास सियाट्स मक्का 2 है जो 75 से 80 दिन या 60 ड्यूरेशन की प्रजाति है और यह जो है 14-15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देती है। इसके बाद हमारे पास प्रभात प्रजाति है, यह 16 से 18 कुंटल का उत्पादन देती है प्रति एकड़। नवीन प्रजाति है, यह भी 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। साथ ही साथ आजाद उत्तम, यह काफ़ी पुरानी प्रजाति है, 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 14 कुंटल प्रति एकड़ की है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रही उन्नत प्रजातियां खरीफ मक्के की। अब बीज की मात्रा कितनी लगेगी प्रति एकड़ और बुआई के?

0: पहले क्या बीज शोधन और भूमि शोधन भी करना है?
1: हाँ, बीज का शोधन जो है बहुत ही आवश्यक है। इससे बीज से फैलने वाले रोग होते हैं उनको काफ़ी हम नियंत्रित करते हैं। इसके लिए थीरम या कार्बेंडाजिम दवा आती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है, और उसको लेकर के किसान भाई अगर इसका उपचार कर दें तो बीज से फैलने वाली बीमारियां रुक जाती हैं।
0: और भूमि शोधन?
1: भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा है, इसको किसान भाई 2 किलो प्रति एकड़ की दर से लेकर के और करीब 40 किलोग्राम गोबर की खाद
0: अगर
1: में,
0: 1 कुंतल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गोबर की सड़ी हुई खाद लेकर के उसको मिला लें और मिला करके उस पर पानी थोड़ा सा छिड़क दें और इसको छाए में रख करके 8-10 दिन के लिए छोड़ दें, और जैसे ही आखिरी जुताई का समय आए किसान भाई इस खेत में छिड़काव कर दें। भूम से जो फैलने वाले रोग हैं इनसे बचाव हो जाता है।
0: और बीज की मात्रा प्रति एकड़?
1: बीज की मात्रा प्रति एकड़ करीब करीब 8 किलोग्राम संकर में और 8 किलोग्राम ही लगभग संकुल में लगती है। अगर बीज का दाना छोटा है तो मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है।
0: जी, यानी जो संकर प्रजातियां हैं उनका बीज 8 किलो प्रति एकड़,
1: हाँ,
0: और संकुल प्रजातियों का 8 से 10 एकड़ कर सकते हैं?
1: 8 से 10 संकुल प्रजातियां हैं और संकर का 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज पर्याप्त होता है।
0: डॉक्टर साहब, बुआई का अंतरण क्या होगा, बुआई का तरीका क्या होगा? क्या आजकल रिज पर भी मक्के की बुआई हो रही
1: हाँ,
0: है?
1: अगर किसान भाई रिज पर मक्के की बुआई करें तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इससे बरसात के दिनों में जल निकास की सुविधा मिलती है और यदि हवा तेज चलती है तो फसल गिरती नहीं है, तो इसमें किसान भाई मेड़ों पर बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई अगर कूड़ में बुआई करते हैं तो कूड़ की गहराई उनको करीब करीब 3.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, और इसके साथ जैसे हमारी फसल है तो करीब 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 20 सेंटीमीटर जो है हमारी पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों को कम से कम रखना चाहिए।
0: यानी 1.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी,
1: और जो हमारी संकर प्रजाति है इसके लिए 60 सेंटीमीटर 2 फीट की पंक्ति से पंक्ति और करीब 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों को रखना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, फसल की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे हो, कितना हो?
1: देखिए, संतुलित उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे किसी भी फसल की खेती के लिए, तो किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो मृदा परीक्षण का कार्य कराना चाहिए। यदि मृदा परीक्षण नहीं कराते हैं तो किसान भाइयों को जो है इसमें प्रति एकड़ की दर से संकर के लिए 48 किलोग्राम नत्रजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 24 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों को पोटास की मात्रा 40 किलोग्राम, डीएपी की मात्रा 50 किलोग्राम और साथ में, चूंकि यूरिया जो है वो नत्रजन जो है मक्का की खेती में 4 बार में प्रयोग करना होता है,
0: यानी स्प्लिट डोज में।
1: हाँ, स्प्लिट डोज में। तो बुआई के समय किसान भाइयों को जो है, चूंकि डीएपी से वो फास्फोरस की पूर्ति करते हैं तो डीएपी में नत्रजन होती है, अतः डीएपी की खाद देने के समय नत्रजन कम कर देना चाहिए और किसान भाइयों को मात्र 5 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम ही यूरिया उसमें रखना चाहिए। तो इस प्रकार किसान भाई जैसे संकर मक्का बो रहे हैं तो 40 किलोग्राम उनका पोटास और 50 किलोग्राम उनकी डीएपी और साथ में 7-8 किलोग्राम यूरिया को मिला करके इनको कूड़ में बीज के नीचे डालना चाहिए। और जहां तक नत्रजन की स्प्लिट डोजों की बात है, 3 बार में उनको जो है प्रयोग करना चाहिए। इनको जितनी मात्रा बची है बराबर बराबर मात्रा को 3 भागों में बांट करके किसान भाइयों को इसको प्रयोग में लाना चाहिए। करीब 25 किलोग्राम एक बार में ट्रॉप ड्रेसिंग करें, या तो बेहतर तो ये होगा कि हर पौधे की जड़ में, जिसको जो है कहते हैं रिप्लेसमेंट विधि कहते हैं,
0: या साइड ड्रेसिंग कर दें।
1: हाँ, या साइड ड्रेसिंग कर दें, क्योंकि यूरिया मोबाइल
0: अगर लाइन से बुआई किए हैं
1: हाँ
0: तो साइड ड्रेसिंग ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ मक्का की उन्नत खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 8787222590 8787222590 8787222590
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ मक्का की उन्नत खेती के बारे में?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा किसान भाई समय से जो है इसकी बुआई सुनिश्चित करें और किसी भी स्थिति में 10 जुलाई तक इसकी बुआई कर लें, और जब भी बीज की बुआई करें बीज का शोधन अवश्य कर लें, साथ साथ भूम

0: शोधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि किसान भाई अपनी फसल को प्रारंभ से ही भूम से और बीज से फैलने वाले रोगों से बचा सकें।
1: डॉक्टर प्रभाकर सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ मक्का की उन्नत खेती कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ मक्का की उन्नत खेती, इस विषय पर भी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभाकर सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। और इसी के साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान

0: मरते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं और प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रविशंकर देहाती व साथी के गाए भोजपुरी लोकगीत।
2: अरे तोहके चढ़ाई बे मैया नारियल चुना।
1: कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं गंगा गीत के साथ, आवाज है रविशंकर देहाती व साथी की।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम लोक संगीत के लोक माधुरी में आप सुन रहे हैं रविशंकर देहाती व साथी के गाय भोजपुरी लोकगीत। हर कार्यक्रम के अंत में अपारी है इस पूर्वी गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में अभी आप आनंद दे रहे थे रविशंकर देहाती व साथी के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीतों का। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजने को है और अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है। आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरोबैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरोबैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और

0: महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों

0: समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चार दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग चार दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। ICC विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 6:30 से। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अनुराग कुमार श्रीवास्तव से प्रवीण कुमार की बातचीत ई साक्ष्य। नई उड़ान ये कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में सुनिएगा परिचर्चा, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फैलता संजाल, विश्वसनीय समाचारों के समक्ष एक चुनौती। प्रतिभागी होंगे शरद मिश्रा पत्रकार, अनुराग शर्मा और वीरेंद्र सक्सेना पूर्व सूचना आयुक्त। संचालन होगा शरद मिश्रा का। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

जिले की हलचल आप सुनते हैं सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर समाज फरमाइएगा उर्दू प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आकाशवाणी प्रयागराज की पेशकश होगी। कल प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा में जानिएगा मालाबार नीम के साथ हल्दी की सहफसली खेती के बारे में। समाज में डॉक्टर का महत्व और उसकी भूमिका, इस विषय पर नीना सोनकर की वार्ता आप सुनेंगे। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में समय रहेगा प्रातः 7:00। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा, विषय होगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम आंगनवाड़ी में आप सुनेंगे महिलाओं में हड्डियों का स्वास्थ्य जोखिम और रोकथाम के उपाय, इस विषय पर डॉक्टर निर्मेश भल्ला वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रसाद अस्पताल लखनऊ से नीना सोनकर की बातचीत। मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीक, डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंटवार्ता प्रसारित होगी कार्यक्रम विज्ञान और किसान में कल दिन में 2:30 से। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नई उड़ान ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में सुनिएगा ऊर्जा का उत्सव फिट युवा फ्यूचर रेडी भारत, इस विषय पर डॉक्टर नारायण प्रसाद विभागाध्यक्ष नेफ्रोलॉजी SGPGI लखनऊ से की गई नीना सोनकर की बातचीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, विषय होगा फल फूल और सब्जियों में सामयिक प्रबंधन, खरीफ में सब्जी उत्पादन, फलदार पौधों की सघन बागवानी और फूल उत्पादन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ। प्रस्तुति एवं संचालन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा कानून की बात, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग, इस विषय पर कुंवर शशांक एडवोकेट हाईकोर्ट से अतिश कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। बातों बातों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:45 पर। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगा डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता से की गई डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की भेंटवार्ता नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति चित्रण। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन कल सुबह 7:31 पर और उसके बाद रात्रि 10:30 पर। हरिश्चंद्र गिरी व साथी के आल्हा गायन का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम लोकरंग में कल सुबह 9:50 पर और कार्यक्रम लोकमाधुरी में दिन में 2:45 पर। बेला सुलाखी के गाय भजन आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात्रि 8:10 पर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें फिल्म संगीत का फोन इन इंटरएक्टिव प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा कल सुबह 11:00 से। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मांडवी और लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपका अपना प्रोग्राम युवा तरंग। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ऐसी बातें करते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई परंपरा जुड़ी होती है। सुबह उठकर बड़ों का आशीर्वाद लेना, घर आए मेहमान का मुस्कुराकर स्वागत करना, त्योहार पर पूरे परिवार का एक साथ बैठना, पूजा के बाद प्रसाद बांटना, शादी ब्याह में लोकगीत गाना या फिर दादी नानी की कहानियां सुनते सुनते बड़े होना, ये सब बातें इतनी सामान्य लगती हैं कि हम इन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर सोचें तो यही छोटी छोटी बातें हमारी पहचान बनाती हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लाइफस्टाइल बदल रही है, लोगों के सोचने और जीने का तरीका बदल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई चीज़ हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है तो वो है हमारे ट्रेडिशंस, यानी हमारी परंपराएं। परंपराओं का मतलब सिर्फ पुराने रीति रिवाज निभाना नहीं होता, परंपरा का मतलब होता है वो अच्छे विचार, वो संस्कार और वो जीवन मूल्य जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इंडिया को सिर्फ एक देश

नहीं बल्कि संस्कृतियों और परंपराओं का एक खूबसूरत संगम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारी परंपराओं की, जानेंगे आखिर परंपराएं बनती कैसे हैं, उनका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, समय के साथ उनमें क्या बदलाव आए और क्या आज भी उन्हें समझना और संभाल कर रखना उतना ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प प्रोग्राम की इस प्यारे से सॉन्ग के साथ।

0: दोस्तों, हम अक्सर ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। परंपरा यानी वो अच्छी बातें, अच्छे संस्कार और जीवन जीने का तरीका जिन्हें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक पहुंचाती है, जैसे त्यौहार मनाने का तरीका, बड़ों का सम्मान करना, अतिथि का स्वागत करना, प्रकृति के प्रति सम्मान रखना, परिवार के साथ मिलकर खुशियाँ मनाना। यानी परंपराएं हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाती हैं कि क्यों करना है, और यही बात उन्हें खास बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग अपनी ये बातें जारी रखेंगे, पर उसके पहले हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता जिसका विषय है ई साक्ष्य। भेंट करता है प्रवीण कुमार और वार्ताकार हैं डॉक्टर अनुराग कुमार श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रवीण। जब भी किसी अपराध की बात होती है तो हमारे दिमाग में अदालत, गवाह और कागजी दस्तावेजों की तस्वीरें घूमने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज के इस डिजिटल युग में, जब स्मार्टफोन हम सबके पास उपलब्ध है, तो हमारी न्याय प्रणाली कितनी आधुनिक हो चुकी है? डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीक का न्यायिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इन तमाम प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनुराग कुमार श्रीवास्तव जी। प्रोफेसर श्रीवास्तव, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आपको बताते चलें कि प्रोफेसर अनुराग कुमार श्रीवास्तव जी लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में पढ़ाते हैं जी। तो सबसे पहले यही जानने का प्रयास करेंगे कि ई साक्ष्य होता क्या है।
2: हाँ, ई साक्ष्य भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है। ई साक्ष्य का जो पर्पज है, जब से नए क्रिमिनल कानून प्रभाव में आए हैं और इन नए क्रिमिनल कानून का जो पर्पज रहा है, वह मुख्य पर्पज यही था कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का प्रचलन बढ़ा है, उनको किस तरीके से साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सके। अब कानून तो बना दिया गया, लेकिन उस कानून से कॉम्पेटिबिलिटी जो है, उसकी जो सार्थकता है, वह सिद्ध कैसे की जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही कुछ और ऐप भी बनाए गए, जैसे न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मन्स, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा जो क्रिमिनल और क्राइम का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैक, किस तरीके से उसको किया जा सके, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने का ये प्रयास किया जा रहा है। एक और जो महत्वपूर्ण है, ये एक्सक्लूसिवली पुलिस ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए बनाया गया
1: जी।
2: ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये पुलिस अधिकारियों को अपराध स्थल की जांच, तलाशी अभियान और जब्ती के दौरान डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रूप से एकत्रित करने, दस्तावेज बनाने और उनके प्रबंधन में सक्षम बनाती है। इसे भारत के जितने भी नए कानून, जो अद्यतन आपराधिक कानून जो आए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इनके प्रावधानों का समर्थन करने के लिए यह डिजाइन किया गया, जिसमें कंफर्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और गंभीर अपराधों में विशेष कर प्रावधान किया गया कि उनका रिकॉर्डिंग यानी कि डिजिटल फॉर्म में उनको तैयार करना है, और ऐसा तैयार करना है कि न्यायालय को सहयोग सहायता कर सके, ये इसका पर्पज है
1: जी। तो जब इतना महत्वपूर्ण ऐप है, तो इसकी खास क्या क्या विशेषताएं हैं?
2: जैसा हमने कहा कि ये एक्सक्लूसिवली पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस वालों के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी के लिए, अन्वेषण अधिकारी के लिए बनाया गया है ये ऐप। इस ऐप के माध्यम से अपराध स्थल, गवाहों और जांच अधिकारियों के जो वीडियो हैं, जो 4 मिनट तक के हो सकते हैं, इसमें हम और आपको बताएंगे कि क्या क्या टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये तस्वीरों को रिकॉर्ड करती हैं और एक स्वचालित ऐप के रूप में ये प्रत्येक डिजिटल पैकेट के लिए एक 16 अंक का, 16 डिजिट का एक सुरक्षित हैश वैल्यू क्रिएट कर देती है, जिससे कि

0: जो डेटा की अखंडता जो है वो सुनिश्चित होती है, और जियो टैगिंग के द्वारा और टाइम स्टैम्प के द्वारा ये इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यदि अपराध स्थल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है तो अधिकारी अपने उपकरण पर रिकॉर्डिंग कर लेगा और एक सुरक्षित हैश मान उत्पन्न करके बाद में पुलिस स्टेशन से सबूत को क्लाउड पर अपलोड कर सकता है।
1: जी
0: अब क्या होगा कि न्यायालय को ये सुविधा हो जाएगी कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया गया, जैसे सीन ऑफ क्राइम बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है आपराधिक मामलों में,
1: बिल्कुल
0: अब सीन ऑफ क्राइम पे कौन पहुंचता है? न्यायालय नहीं पहुंचता, वहां पहुंचा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस अधिकारी। अब पुलिस अधिकारी वहां पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजों को देखता है और समझने में सक्षम शायद नहीं हो सकता उस समय। तो वैसे में क्या होता है कि जब वो लौट के आता है और उसको रिकॉर्ड करता था तो बड़ा मिसकंसेप्शन, कंफ्यूजन, और न्यायालय उसको मानने से मना करता। अब क्या है कि वो रियल टाइम में जियो टैगिंग के साथ
1: रिकॉर्ड
0: वो
1: करेगा।
0: उसको रिकॉर्ड करता है और क्लाउड पे स्टोर कर देता है। न्यायालय डायरेक्ट उसको क्या है, न्यायालय में उसको देखता है। अब उसको वो ऑथेंटिक है या नहीं उस पर डाउट नहीं रह गया उसको। चीजें वो अपने हिसाब से समझ सकता है, ना कि पुलिस वाले के बताने के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें अब न्यायालय स्वयं देख रहा है।
1: जी
0: पुलिस वाले के माध्यम से जो स्टोर किया गया वो न्यायालय स्वयं देखने में सक्षम है, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम होगा। और शायद जो सबसे बड़ी समस्या हमारे न्यायिक मामलों में आ रही थी कि सजा जो दोष सिद्धि है वह बड़ी कम होती थी, कन्विक्शन रेट बड़ा कम रहता था।
1: जी
0: इससे जो वर्ल्ड रैंकिंग बनती थी उसमें बड़े नीचे आ जाते थे। ट्रायल हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन दोष सिद्धि नहीं हो रही। हर हर मुजरिम आप देखेंगे छूट जा रहा है।
1: जी यानी कहीं ना कहीं त्वरित न्याय प्रणाली को अपनाने में, इसे
0: त्वरित
1: त्वरित
0: न्याय
1: न्याय देने में भी हमें कहीं ना कहीं मदद
0: सुनिश्चित
1: मिली।
0: करने में,
1: जी
0: न्याय को सुनिश्चित, त्वरित उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना न्याय का सुनिश्चित होना।
1: बिल्कुल
0: यह ऐप कहीं ना कहीं उस न्याय को सुनिश्चित करने में सक्षम हो रहा है।
1: जी। तो इसकी और क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं?
0: ई साक्ष्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस तरीके से हमें ट्रेडिशनल पैटर्न पे 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने लागू किया, उस समय शायद इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डिजिटलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं था, अस्तित्व में ही नहीं था, तो उस तरीके से सोचा नहीं गया। कानून बड़ा अच्छा था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इनका प्रचलन बढ़ा है और आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और क्राइम का एक बहुत बड़ा कारण और साधन ये इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स
1: गैजेट्स
0: हैं, ये गैजेट्स हैं, वो बन गए हैं।
1: जी
0: तो उस पे विचार करते हुए ये एक साक्ष्य संग्रह करने का एक जो मानक है, मानो मानकीकृत, जिसको न्यायालय इजीली एक्सेप्ट कर सके ऐसा, और जो टैम्परिंग के चांसेस हुआ करते थे उन साक्ष्यों में,
1: जी
0: उसका रोकना, उसका रुकना यहां बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये ऐप कहीं ना कहीं उस टेम्परिंग के चांसेस को, अपॉर्चुनिटीज को कम करता है, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करता है कि जो भी साक्ष्य है वो रियल टाइम में है और वो न्यायालय की जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षा है उस न्याय को सुनिश्चित करने में, उसके अनुरूप है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमारे पास आ जाता
1: जी।
0: है।
1: तो मौजूदा जो डीप फेक की जो दौर है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया
0: जी
1: जा रहा है, किसी की आवाज़ रहती है, किसी का फेस रहता है, और कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करके बहुत सारे क्राइम भी किए जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो इस ऐप की भी कुछ चुनौतियाँ होंगी।
0: निश्चित ही इस ऐप की चुनौतियां होंगी। एक बड़ी चुनौती जो मैं आपको बता दूं, जिसका जिसका निराकरण हम कर सकते हैं, किया भी गया है, कनेक्टिविटी
1: जी
0: एक तो ये है। दूसरा चुनौती जो है वो ये है कि जिन पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस वालों के लिए ये ऐप डिज़ाइन किया गया है, उनकी ट्रेनिंग कि वो उसको चला सकते हैं, किस तरीके से चला सकते हैं। तीसरा है सिक्योरिटी, जो आपने कहा डीप फेक, और ये ट्रेनिंग में ये पुलिस वालों को ये बताया जाना, ये एक बड़ा चुनौती भी होगा और जरूरी भी होगा कि देखो जिस मोबाइल पे आप इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, एक तो वो गलत हाथों में ना जाए। क्यों? क्योंकि इसमें

0: मैं बता दूं, इस ऐप को यूज करने के लिए आपको जो भी यूजर है उसका मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी मिलेगा जो उसको ऑथेंटिकेट करता है। तो जब भी आप उस इंस्ट्रूमेंट को पे ये ऐप अपलोड करेंगे, तो एक तो वो गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, दूसरा आप कम से कम उसमें 20% से ज़्यादा उसकी बैटरी रखें जब भी सीन ऑफ क्राइम को विजिट कर रहे हो। अच्छा तो होगा कि आप बेहतर बैटरी बैकअप उसमें रखें। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा जो स्पेस है उसमें आपके मोबाइल में, क्योंकि एक अच्छा खासा स्पेस, 4 मिनट तक के वीडियो अपलोड करने की बात की गई, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात, तो एक अच्छा स्पेस आपको उसमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस मोबाइल को लेकर आप सीन ऑफ क्राइम को विजिट कर रहे हैं वो रखें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उसका एक्सेस सुरक्षित हो।
1: जी बिल्कुल, डिजिटल इंडिया का यह रूप हमारे युवा श्रोताओं को भी जरूर पसंद आया होगा। इस साक्ष्य के माध्यम से हमारी न्याय प्रणाली अब और भी पारदर्शी और मजबूत हो रही है, साथ ही कहीं न कहीं त्वरित न्याय प्रणाली को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इस साक्ष्य के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी एक भेंट वार्ता जिसका विषय था ई साक्ष्य। वार्ताकार थे डॉक्टर अनुराग कुमार सिंह और भेंटकर्ता थे प्रवीण कुमार। आइए अब सुनते हैं गीत।

0: दोस्तों, अब आप सुनिए एक वार्ता जिसका विषय है धरोहर लोक गाथा। वार्ताकार हैं डॉक्टर आरपी सिंह। आइए सुनते हैं।
1: लोक जीवन को देखें तो शाम को खेती किसानी और अन्य कामों से मुक्त होकर चौपाल, अलाव आदि स्थानों पर एकत्रित होकर लोक गाथाओं को कहने सुनने की परंपरा रही है। लोग इकट्ठे होकर कुछ पदों में देवी देवताओं की स्तुति करते हुए मंगलाचरण हुआ, फिर प्रारंभ हुआ गद्य पद के मिश्रण में एक ऐसा वर्ण जिसके प्रस्तुतिकरण से श्रोता ऐसा मोहित होता है कि गाथा वर्ण के काल को अनुभव करने लगे। बनाफर वंश के लोक नायक आल्हा और उदल की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन हो, चाहे एकिया हो रामा हो राम जैसे टेकों के साथ गाया जाने वाला इंद्र के शाप से एक देव और एक अप्सरा के 7 जन्मों की कथा सोठी ब्रजाभार, या बिहुला बाल लखंदर, राजा विजयमल, राजा गोपीचंद, सोनी महीवाल, शोभा बंजारा, लोकनायक लोरी की कथाएं, लोरी की राजा भर्तरी की गाथाएं, या स्वतंत्रता संग्राम के काल की बाबू कुंवर सिंह की लोक गाथा, सभी एक ऐसा शमा बांधती हैं कि कहिए शाम से सुबह हो जाए। आला इसी के अंतर्गत एक सशक्त माध्यम है जो वीर गाथा का श्रेष्ठ उदाहरण है। आल्हा को युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार माना गया है। ये 12वीं विक्रमीय शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध काल तक महान पराक्रम दिखाते हुए वीरगत को प्राप्त हो गए। इनकी वीरगाथाएं लोकमानस का रंजन का सशक्त माध्यम बनी और लोक गाथा के रूप में उत्तर भारत में काफी प्रचलित हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर हमें विदित है कि यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस आल्हकंड का सहारा लेना पड़ा था। पूरब में सोठी ब्रजभार लीजिए ब्रजाभार भी कह सकते हैं इसे, भोजपुरी में भावपूर्ण प्रेम काव्य एकिया जैसे टेकों के साथ गाया जाने वाली, इसमें इंद्र के साप से एक देव और एक अप्सरा के 7 जन्मों की कथा है सोठी ब्रजाभार, जिसमें ये दोनों जन्म जन्म मिलते बिछड़ते रहते हैं। इसकी कथा लगभग 100 भागों में मिलती है। लोक गाथा एक प्रकार से गीत और कहानी का आमेलन होता है। हम इसे अंग्रेजी के प्रचलित शब्द बैलेट के जैसे समझ सकते हैं और इसका जो प्रभाव होता है ये लोक मानस में ऐसा बसा होता है कि समय समय पर इसके रूपक, इसके बिंब हमारे समक्ष होते हैं और हम लोग उसको आम जीवन की भाषा में भी प्रयोग में लाया करते हैं। अवधि क्षेत्र में लोक गाथाएं

जैसे राम सीता की गाथाएं, शिव पार्वती की गाथाएं, ये धार्मिक और सांस्कृतिक वर्णन तो लेती ही हैं। इसके अतिरिक्त राजा भर्तरी, श्रवण कुमार की गाथा, चंदावली की गाथा, लगभग सभी ने जनमानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अगर हम भारतवर्ष के हिंदी क्षेत्रों में लोक गाथाओं की बात करें तो देखते हैं बिहार के अंगिका क्षेत्र में लोरिक, बिहुला, करू भगत, रानी सरंगा, राजा विजयमल, गोपीचंद, भर्तरी मीरायन आदि, कुमायूनी क्षेत्र में उत्तरा देवी, होणा देवी, बालाहारू, नल दमयंती, मल्लिकार्जुन, नरसाधौनी, मालूसाही, वहीं थोड़ा सा आगे बढ़कर गढ़वाल क्षेत्र में रुक्मिणी हरण, चंद्रावली हरण, सूरज कुंवरी, कुसुमा कोलिन, गंगू रमोला, बिढ़नी विजयपाल, बागा रावत आदि की काफ़ी प्रभावशाली लोक गाथाएँ हैं। छत्तीसगढ़ में अहिमन रानी, पंडवानी, फुलबासन, कल्याण सिंह, सीताराम नायक, ढोला मारू, फूल कुंवर, लोरिक चंद्राणी काफ़ी लोकप्रिय लोक गाथाएँ हैं वहाँ पर। वहीं ब्रज क्षेत्र में आल्हा, हीरामन, ढोला, गोपीचंद, मोरध्वज, गुरु गग्गा और बघेली में ढोला, राजा भर्तरी, करंदानी, बसावन मामा काफ़ी प्रभावशाली लोक गाथाएँ हैं। बुंदेली के आल्हा, राछा, सरंगा, भरनागा, जयदेव का पमारा, सीत बसंत, राम कथा, कृष्ण कथा और उधर बिहार के मगही क्षेत्र में लोरकें, कुंवर विजय, रेशमा, शोभा नायक, सारंगा, राजा ढोला, राजा भर्तरी लोक गाथाएँ काफ़ी प्रचलित हैं। मैथिली में बिहुला, कुंवर विजय, शोभा नायक, राजा ढोला लोकमानस में बसी हुई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ हर भाषा और हर बोली में हजारों लोक गाथाएँ विद्यमान हैं। राजा भर्तरी की लोक गाथा जो उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित है, लोक गायक, लोक गाथाकार खंजरी बजाते हुए कहता है भर्तरी का गीत, सुनिले मिर्गिन बात काल मिर्गा ए राम, मुला आए हैं वो एक जोगी हैं ये, वो कुदवत हैं वो। इसी तरह आल्हा का उदाहरण ले तो मिलती हैं ऐसी पंक्तियाँ, पहल बचनिया है माता की बेटा बाघ मार घर लाओ, आज उबाप कर बैरी मारे मुरछतिया की दाह बताओ, बिन अहेर के हम ना जावें चाहे कोटिन करो उपाय, जिसका बेटा कायर निकले माता बैठ बैठ पचाए। इसी संदर्भ में हम आगे वीरगाथा का एक उदाहरण पाते हैं लोक गाथाओं में, टगी खुपड़िया बाप चचा की मांडूगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खुपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा कहवा मलके कहवा उदले लड़ते लाल, बच के आना मारूगढ़ में राज बघेल की हो गए काल। ये जगनिक के आल्हा खंड में इस तरह की अनंत पंक्तियां हैं जिसे हम लोक मानस में लोक गाथा के रूप में देखते हैं, अवतरित करते हैं। अगर हम लोक गाथा के स्ट्रक्चर पे बात करें, उसके क्या होता है इस पर चिंतन करें, तो हम पाएंगे कि ये अधिकतर मौखिक होती है, यानी इसकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में चलती आती हैं। इनके मूल रचयिता या उद्गम काल का सही सटीक पता नहीं होता और इनका प्रामाणिक मूल पाठ नहीं मिलता है। समय और व्यक्ति अपने अपने अनुसार इसका गायन प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं। वैसे इसमें संगीत तो जरूरी होता है, अक्सर नृत्य की भी संभावना रहती है और हम इन्हें छोटे छोटे पदों में रची कविता भी कह सकते हैं, लेकिन इनका क्रम लोकप्रिय कथा के रूप में विस्तार से बनता जाता है। लोक गाथाओं में अधिकांशतः स्थानीय प्रभाव देखने को मिलता है। इसके मूल रचनाकार मूल संरचना में यानी कथा वस्तु वही रहती है, लेकिन स्थान विशेष पर लोग अपने अनुसार कुछ परिवर्तन करते हुए देखते भी हैं और ये सरल वर्णनात्मक ढंग से समाज की संपत्ति होती हैं, क्योंकि हम इसमें सांस्कृतिक परिवेश का पुट अवश्य दिखाई देता है। इनमें गायन प्रस्तुतिकरण शैली काफ़ी अलंकृत होती है, साथ ही स्वाभाविक हाव भाव का भी पुट होता है। कथा वस्तु काफ़ी बड़ी भी होती है लोक गाथाओं में और एक छोटे से प्रसंग को भी वर्णन मिलता है। इसमें गायक प्रस्तोता बड़े आराम से प्रस्तुत करते रहते हैं, कुछ समय तत्कालीन विषय वस्तु का प्रसंगों का पुट डालते हुए। और इनमें अगर हम देखें लोक गाथाओं का प्रकार तो सांस्कृतिक पात्रों के साथ ऐतिहासिक पात्र भी होते हैं, लेकिन घटनाक्रम प्रमाणिक नहीं हो भी हो सकता है। लोक गाथाएं अक्सर जनभाषा में होती हैं, इसमें उपदेशात्मकता का अभाव होता है। अनगढ़ मनोरंजन का बहाव लोक गाथाओं को प्राकृतिक बनाता है, जहां मिलता है भावों का एक स्वच्छंद प्रवाह और यही एक मनोरंजक कविता का जादू बनाती हैं लोक गाथाएं। जहां तक अतिशयोक्ति की बात है वो यहां स्वाभाविक ही मिलता है, जैसे नौलखा हार, नौमन दाल रखने वाले चमचे, जैसे बड़ बड़ चमचा मारोगढ़ में जीवा नौमल दाल अमाए, बड़े खवैया मारो वाले चमचा आठ हाथ लोखाएं,

इनका कथानक अगर हम देखें तो काफ़ी प्रभावशाली और मनोरंजक होता है। ये वास्तव में लोक गाथाएँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, क्योंकि इनके लेखकों को पता नहीं और न ही किसी वर्ग से संबद्धता।

दोस्तों आपको बता दें कि कल आपके साथ रहेंगी प्रोग्राम में हमारी दोस्त आयुषी। चर्चा का विषय रहेगा वन महोत्सव और आपको एक भेंट वार्ता भी सुनवाएंगे जिसका विषय रहेगा जलवायु कार्य और युवाओं की पहल। भेंट करता रहेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी, वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर HB सिंह जो कि सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। और इसी के साथ अपनी दोस्त मांडवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नई उड़ान कार्यक्रम के श्रोताओं, आप सभी को आज की शाम शोभित का नमस्कार। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी आवाज, हमारी समस्याएं और हमारे सपने आखिर देश की नीतियों तक कैसे पहुंचते हैं? इसका सबसे बड़ा माध्यम है हमारी संसद, और इसी

को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष आज यानी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें लोकतंत्र की उस खूबसूरत व्यवस्था की याद दिलाता है जहां जनता की आवाज सर्वोपरि होती है। आज का दिन एक और कारण से भी विशेष है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात अर्थशास्त्री और समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि भी है। दादा भाई नौरोजी एक ऐसा नाम जिसने भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया के सामने तथ्यों के साथ रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत की संपत्ति लगातार विदेश भेजी जा रही थी। उनकी इसी सोच ने देशवासियों में नई चेतना जगाई। यही नहीं, वे ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय भी बने। वहां उन्होंने बिना डरे भारत के हितों की आवाज उठाई थी। दोस्तों, आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो संसद केवल एक भवन नहीं बल्कि विश्वास, संवाद और जवाबदेही का प्रतीक है। यहां मतभेद हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही होता है और वो है जन कल्याण। और लोकतंत्र तभी मजबूत बनता है जब नागरिक भी जागरूक हों, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें, समाज के मुद्दों पर विचार करें और सकारात्मक भागीदारी निभाएं। दादा भाई नौरोजी का जीवन हमें यही सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल सत्ता से नहीं बल्कि विचार, शिक्षा, ईमानदारी और जनसेवा से होता है। तो कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और गीत के उस पार आपसे फिर मिलते हैं।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में आज अब आपको एक परिचर्चा सुनाते हैं जिसका विषय है सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फैलता संजाल, विश्वसनीय समाचारों के समक्ष एक चुनौती, जिसे संचालित किया है शरद मिश्र ने।
1: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के समय में जिस तरह से तकनीकी का उपयोग जीवन की एक सबसे मूलभूत जरूरत हो गई है, ऐसे में हमको तकनीक के साथ किस तरह से उसका उपयोग करना है, उससे क्या सावधानी रखनी है, इस बारे में चर्चा के लिए आज हम लोगों के बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। और आज का जो मूल विषय है उसका विषय का नाम है सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फैलता संजाल, विश्वसनीय समाचारों के समक्ष एक चुनौती। और इस विषय पर अपने ज्ञान को हम लोगों के साथ साझा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त श्री वीरेंद्र सक्सेना जी हैं। रिपोर्टिंग के साथ ही डेस्क पे और लंबे समय से पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले श्री अनुराग शुक्ल जी भी हैं। वीरेन जी और अनुराग जी, आपका आज के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर जी।
1: वीरेन जी, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो आज का विषय है कि बिना आज तकनीकी के शायद कल्पना मुश्किल है कि किस तरह से आगे का जीवन चलेगा। छोटी छोटी चीजों में हर घड़ी मोबाइल के बिना आप ऐसा महसूस करते हैं जिस दिन उपयोग ना करें कि बिल्कुल अछूता रह गया। तो किस तरह से आप देखते हैं कि तकनीकी का उपयोग मानव जीवन में किस हद तक है और उसका उपयोग किस तरह से आदमी कर रहा है, इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करें, फिर आगे हम लोग विस्तार से बात करते हैं।
2: जी देखिए, ऐसा है कि ये AI जो है अब धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब पूरे विश्व में फैल गया है और हर आदमी इसकी ज़रूरत को बहुत ही अनिवार्य समझ रहा है। ये एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जो मनुष्यों की तरह समस्या का समाधान करने, सोचने समझने में सक्षम रहती है और किसी भी समस्या का भी समाधान करने में ये मदद करती है।
1: जी।
2: तो जैसे कि छवियों को पहचानना है
1: जी,
2: या कोई रचनात्मक सामग्री बनानी है
1: जी,
2: उसको भी जो है ये बड़ी मदद करेगी। आप कोई डेटा आधारित भविष्यवाणियां भी कर देती है
1: जी, जी,
2: तो इसमें मतलब ये ऐसी विचित्र चीज है कि आपको कोई भी समाचार या किसी भी चीज की जरूरत है, कोई भी आपका मैटर है जिसको आप चाहते हो कि हमें लिखना है, AI को बता दीजिए, वो आपको लिख करके और बता के दे देगा। आप उसको देख के अपने हिसाब से थोड़ा सा एडिट करके और जो है उसको
1: बहुत सरल करी,
2: बहुत सरल और बहुत तेज।
1: मैं इसमें एक चीज अभी विस्तार से हम लोग बहुत विषयों पर बात करेंगे, एक चीज जोड़ेंगे, आपका लगभग 50 वर्षों से अधिक का पत्रकारिता का जीवन है, तो उस दौर की पत्रकारिता में तकनीकी का कितना उपयोग रहा और वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप आज भी अपडेट हैं, लगातार लिखने पढ़ने में आपका सक्रिय योगदान रहता है, तो कैसे अंतर को आप महसूस करते हैं और मेरिट है कि कमी है, ज्यादा है, कैसा है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: देखिए, अब इस बारे में अगर जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम तो उस समय से थे जब छापा खाना होता था, लेटर उठा उठा के जो है वो

0: जाते जी, थे जी, और पेज बनाए जाते थे
1: जी, जी, जी,
0: वहां से फिर जो है ये आपका कंप्यूटर आया
1: जी,
0: और कंप्यूटर में ब्रोमाइड निकाला जाता था और वो पेज पे चिपकाया जाता था
1: जी, जी, जी,
0: और प्रूफ रीडर होते थे उसको पढ़ते थे
1: जी,
0: उसके बाद फिर जो है तीसरा स्टेज जब आया तो हम लोग स्वयं ही जो है मॉनिटर के ऊपर अपनी खबरों को एडिट करके और जो है उसको दे देते थे
1: जी, जी,
0: अब जो आ गया है अब तो बहुत ही तेज है, तो अब तो कोई भी खबर बनानी हो आपको AI को बता दीजिए, AI बना के आपके सामने रख देगा, आप उसमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट कर दीजिए और उसको जो है आगे तुरंत भेज दीजिए। तो अब तो तब की पत्रकारिता आपकी पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर आ गया।
1: मुझे लगता तब से गति भी बहुत बढ़ी,
0: बहुत गति बढ़ गई है,
1: जो गति है वो अगर दूसरे दिन के अखबार में सब एक दिन पहले वाली खबरें लगती है, वो जैसे
0: बिल्कुल
1: देखे तो लगता है कि बहुत पीछे हो गया
0: भाई, अब तो कोई भी खबर सेकंड्स में पूरे विश्व में आप फैला देते हैं
1: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल ठीक बात है अनुराग जी, आपका तो बहुत लंबे समय से रिपोर्टिंग में भी आज भी आपका जुड़ाव है, आप किस तरह से देखते हैं AI के उपयोग को, इसने आपके काम में सहयोग किया है या आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि कुछ अंतर आया है पहले के और आज में?
2: सर जी, AI ने वाकई सहयोग तो बहुत किया है, जैसे हमारी खबरों को बेहतर बना देना
1: जी, जी,
2: या बहुत सारी जानकारियों को एक सेकंड में हमारे पास पहुंचा देना, AI के जरिए हम इसको जल्दी कर पाते हैं
1: जी।
2: लेकिन समस्या ये होती है कि AI के जरिए बहुत सारी सूचनाएं हमको गलत मिल जाती हैं
1: जी, जी।
2: अब समस्या ये होती है कि ये सूचनाएं गलत हैं, इसको एक नजर में तो ये पहचान में नहीं आती, लेकिन इसके फैक्ट को हमको चेक करना पड़ता है
1: जी, जी,
2: अगर चेक नहीं किया तो लोगों के सामने बहुत बड़ी गलतियां चली जाती हैं। अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अखबार पे ही होती है, हमारी होती है। कई बार ऐसी समस्याएं आए कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चली जो कि लगती एकदम फैक्ट थी
1: जी।
2: तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारे सीनियर्स ने कहा कि यार ये देखो खबर चल रही है, तुमको पता ही नहीं है। हमने कहा कि सर देखता हूँ, मुझे पता नहीं है। जो हमने उसके फैक्ट को पता किया, उसके सूत्रों पर हमने जाके जब पता किया तो पता चला ये खबर ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने फिर उनको बताया कि नहीं ये सर खबर नहीं, ये पूरी तरह से फेक है। और ये सारे उन्होंने फिर बताया कि AI से जनरेटेड है, वो बिल्कुल वैसे ही लगती थी जैसे वो आदमी बोल रहा है, वो देख रहा है, वो वहां से जारी हुआ है। इस प्रकार की समस्याएं बहुत तरीके से सामना करना पड़ती है सर जी।
1: तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको ये संशय है कि ये खबर ठीक है कि नहीं है, तो फर्स्ट आपके क्या रहता है कि किस तरह से आप जानकारी करें, क्योंकि आप बता रहे हैं बिल्कुल समानांतर, बिल्कुल लगता है कि उसमें कहीं भी अंतर नहीं है। आज की तारीख में भी जो विश्वसनीयता है, वो जो बेसिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है और कुछ टेलीविजन मीडिया भी, उस पर आज भी प्रामाणिकता अधिक है लोगों की, लोग विश्वास करते हैं। मगर अगर सोशल मीडिया की एक सीमा है, उस पर आप जानते ही हैं, हर तरह से हर प्रकार की है, ठीक भी है और गलत भी है। तो आप किस तरह से प्रमाणीकरण करते हैं कि ये खबर सही है?
2: सर जी, सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि एक विशेषज्ञ के रूप में हम लोगों को देखते हैं कि हमें तो उस विषय की जानकारी पहले से रहती है
1: जी।
2: कई बार बड़े चैनलों पे वो खबरें फ्लैश हो जाती हैं
1: जी।
2: और ये देखा जाता है कि वो खबरें वो बता रहे हैं और हमको पता ही नहीं है। तो हम जब उसको सूत्रों को पता करते हैं, जैसे सरकारी सूत्रों पर पता करते हैं, तो उनसे जब इस बारे में बात करते हैं, उन्होंने कहा कि आपने कहां देखा, हमने कहा सर फला चैनल पे चल रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल हमने तो इस तरह कोई बातें नहीं जारी की। तो हमने कहा कि नहीं सर, जो आपने पहले बताया था वो बातें सही है, कि ये बातें नहीं जो पहले किया वही सही है। इस प्रकार उसकी पुष्टि होती है,
1: मतलब और मूलभूत स्रोत तक आपको
2: पहुंचना बहुत जरूरी है।
1: और किस तरह से आपको सहयोग क्या मिलता है AI से?
2: AI से बड़ा सहयोग मिलता है हमें, अगर जैसे कि कोई समाचार लिखना है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और बहुत जल्दी देना है कि उन्होंने कहा नहीं तुरंत हमको फ्लैश करना है यार, इस खबर को हमको दे दो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। तो हम AI के टूल्स पे, जो भी AI है उस पे हम ये सामग्री डाल देते हैं
1: जी।
2: समस्या उसमें यही है कि आप जितना फैक्ट उस पे डालेंगे
1: जी, जी,
2: वो आपको उतनी बेहतर सामग्री वो प्रदान करेगा, आउटपुट उतना बेहतर डालेगा
1: जी, जी, जी।
2: लेकिन आपको चेक करना पड़ता है उसके बाद भी कई चीजें, वो क्योंकि वो भी कहीं से लेता ही है, इसलिए बहुत सारी चीजें फिर भी गलत हो जाती है, तो आपको उस बारे में देखना होता है, ये जरूरी होता है।
1: तो माने विश्वसनीयता के लिए आपको उसके मूल स्रोत तक जाना जरूरी है खबर प्रसारित करने के। और ऐसे अक्सर कई देखने को मिलते हैं, जैसे एक चीज मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि मीडिया, मेन मीडिया भी वो सोशल मीडिया पे डिपेंड हुआ है। जैसे मतलब मैंने देखा अक्सर कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया तो हम लोगों के लिए वो खबर है, वो मूलभूत बिल्कुल फैक्चुअल है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कई मुख्यमंत्री जी ने किया या कोई ऐसे प्रमाणिक, तो उसको हम लोग एक खबर बना करके एक प्रमाणिक रूप में ये मानते हैं और उसी को हम लोग प्रसारित करते हैं, एक पक्ष वो भी है। वीरेंद्र जी, अच्छा ये बताइए कि जिस तरह की आज की परिस्थितियां हैं
0: जी,
1: इस परिस्थिति में 2-3 बड़े पक्ष आते हैं कि आप तो संवैधानिक रूप से भी कई जिम्मेदारी आपने निभाई है, आपके पास कई प्रश्न आए होंगे, किसी की कॉपी है वो ले ली किसी ने तो उसका उपयोग हो गया, तो उस सब चीजों पे भी किस तरह से सजगता रखी जाए?
0: देखिए, इस पे तो अभी अंकुश नहीं लग पाया है, लोग जो हैं एक दूसरे की खबर उठा लेते हैं, उसके हिसाब से फिर अपनी खबर बना

0: लेते हैं तो उस पर अभी फिलहाल तो कोई अंकुश नहीं लग पाया है। और जो ये फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये भी बड़ा डेंजरस है। हम लोग कई बार पढ़ते हैं उस पर सोशल मीडिया पे कि 6% जो है महंगाई बढ़ गई, तो सोचते हैं बड़ा अच्छा, बड़ा खुश हो गए। दूसरे दिन अखबार में देखते हैं कुछ नहीं होता है, फिर जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से पता करते हैं, पता लगता है भाई कोई मैसेज नहीं है। तो इस तरह की खबरें आती हैं। कभी आता है कि वो बुजुर्गों के लिए रेलवे का कंसेशन फिर से शुरू हो गया, अब आप जो है दूसरे दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार देखें अखबार में देख रहे हैं कुछ नहीं, ब्लैंक है। तो ये इस तरह की जो फेक खबरें आती हैं इनको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। बिना क्रॉस चेक किए अगर आप कहीं किसी मीडिया में लिख रहे हैं तो कतई ना लिखें इसको।
1: जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, वैसे सरकार भी इसको लेकर के काफी सजग है और प्रयास रहता है उसका कि किसी प्रकार से जितना अंकुश लगाया जा सके। इसी तरह अभी फरवरी में ही आईटी एक्ट में संशोधन भी किया गया है और उसमें एक तरह से जवाबदेह बनाया गया है कि कोई गलत कंटेंट अगर डाल रहा है उस पे तो उसके लिए तुरंत उसको हटाया जाए। जो एक समय पहले अधिक था उसको 2 घंटे किया गया है, 3 घंटे किया गया है जर्नल का, और अगर निजी है तो उसको

0: किसी प्रकार से जितना अंकुश लगाया जा सके। इसी तरह अभी फरवरी में ही आईटी एक्ट में संशोधन भी किया गया है
1: जी जी।
0: और उसमें एक तरह से जवाबदेह बनाया गया है कि कोई गलत कंटेंट अगर डाल रहा है उस पे तो उसके लिए तुरंत उसको हटाया जाए। जो एक समय पहले अधिक था उसको 2 घंटे किया गया है, 3 घंटे किया गया है जर्नल का, और अगर निजी है तो उसको 2 घंटे तुरंत कंटेंट हटाए। और अगर उसमें कुछ आनाकानी करते हैं कोई जो सोशल मीडिया साइट्स है तो उस पर भी कार्रवाई के लिए कोई ना कोई उनकी बाध्यता बनाई गई है और सरकार निरंतर इसको लेकर के कर रही है। और एक और उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे कोई जनरेट है, आपने AI जनरेटेड है पिक्चर है तो आपको उसमें अपना एक लगाना होगा कि ये AI जनरेटेड है। इस चीज को भी सरकार ने प्रयास किया है कि कोशिश करे, मगर जितनी ज्यादा बहुतायत है उसमें अंकुश लगाना, सबसे बड़ा अंकुश तो स्वयं ही है। एक तरह से संपादन का जिम्मेदारी तो आप ही के पास है ना, तो संपादन का जिम्मेदारी होने के कारण तो वही सर्वे सर्वा है कि जो सूचना पहुंचे वो ठीक से पहुंचे अगले व्यक्ति तक।
1: आजकल जो है सरकार भी AI को विस्तार करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि प्रदेश सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में कौशल विकास केंद्र के माध्यम से इसको कंपलसरी कर दिया है सब्जेक्ट कि सब इसको पढ़ें, तो ये एक अच्छी बात है। अभी से अगर बच्चे अभी से पढ़ने लगेंगे तो वो जाते जाते एकदम पारंगत हो जाएंगे इसमें।
0: जी जी बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, इसमें एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि उसके मूल में ही आर्टिफिशियल है, माने वो कृत्रिम है। तो वो आप जब मूल में ही कृत्रिम है तो उसको आपको ये समझ के ही काम करना है कि आप मूल तो व्यक्ति ही है जो उससे जनरेट कर रहा है, तो आप विश्वास उसी पे करिए। माने आपने कोई कंटेंट उस पे लिया और उसके बाद में उसको वहां पर आपने जो प्रसारित किया वो कंटेंट आपके द्वारा चेक किया होना जरूरी है,
1: पुष्टि बहुत जरूरी है,
0: पुष्टि बहुत जरूरी है। एक चीज इसमें और जैसे AI के यूज के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कि प्रॉम्प्ट प्रॉपर हो। जब आप यूज कर रहे हैं तो एक तो आप सरल भाषा में, जब AI से किसी, आप AI टूल का नाम लेना ठीक नहीं मगर किसी को भी उपयोग कर रहे हैं तो आप सरल भाषा में, बहुत क्लिष्ट ना हो कि जो उसके पास, क्योंकि वो भी एक संग्रहित डाटा के ही संदर्भ को ले करके वो आपके प्रश्नों के उत्तर देता है। तो आपके पास में ये हो कि बहुत न्यूनतम शब्दों का जो संचयन हो वो बहुत सीमित हो और एक तरह से टारगेटेड हो जो आपको चाहिए। उसके बाद में भी जब आपके पास जो प्राप्त हो उसको आप रीचेक करिए, अपनी कॉपी बनाइए और उसके बाद में उसका उपयोग करिए।
1: देखिए शरद जी, ऐसा है कि अखबार में खबर लिखने का मूल सिद्धांत यही है कि आप जो भाषा लिखें वो आम आदमी के समझ में आने वाली हो।
0: जी जी।
1: अगर आप बहुत साहित्यिक और सांस्कृतिक और तमाम तरह की भाषा लिखते हैं आदमी को समझ ना पाए तो वो एक आपका जो है किसान भी पढ़ता है,
0: टारगेट ऑडियंस अपनी जो
1: ऑडियंस किसान भी पढ़ेगा, आम आदमी भी पढ़ेगा, तो वो ऐसी भाषा होना चाहिए जो आम आदमी की समझ में आ सके,
0: समझ में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और तथ्य परक हो,
1: तथ्य
0: परक हो, क्योंकि विश्वास आज भी वो अखबार का ही नाम लेते हैं।
1: बल्कि हमारे तो गुरु जी जिन्होंने सिखाया वो ये कहते थे कि खबर ऐसी होनी चाहिए कि आदमी 2 लाइन पढ़े तो इतनी रोचक लगे उसे कि वो आखिर तक पढ़ता चला जाए।
0: जी जी।
1: ये कौशल जो है अपने अंदर विकसित करना होता है।
2: अखबारों के दौर में एक खास बात होती थी कि लोग उसको डिक्शनरी में समझते थे, जो उसमें शब्द उपयोग होते थे उसको लोग उपयोग करते थे।
0: जी, जी,
2: आज ये नहीं हो पाया। आज AI के दौर में आप बहुत ही गलत तरह की भाषा का उपयोग देखते होंगे।
0: हाँ, शब्दों का
1: किसी अखबार की हम आलोचना तो नहीं कर सकते, लेकिन साहब भाषा में बहुत गिरावट आई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हिंदी भाषा में अंग्रेजी का इस्तेमाल तो ऐसा हो गया है जैसे कि हिंदी का शब्द होते हुए भी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही गलत है, मैं इसका बड़ा विरोधी हूँ। मैं कई बार एडिटर्स को फोन करता हूँ इसके लिए कि भाई ये क्या लिखते हो इस तरह, क्या हिंदी नहीं है आपके पास? हाँ, देखता हूँ मैं, देख
0: बहुत से शब्द आजकल चलन में ऐसे आ गए, तो वो एक है ही है। अनुराग जी, वैश्विक संदर्भ में जो आज की परिस्थितियां हैं उनको लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का आप देख रहे हैं युद्ध की स्थिति है, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है और हमारा जो मीडियम है मतलब सोशल मीडिया पूरे वैश्विक संदर्भ में एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, वर्तमान स्थिति में आप किस तरह से देखते हैं कि क्या सजगता बरतनी चाहिए, ये थोड़ा सा चर्चा करें।
2: शरद जी, सबसे बड़ी बात कि मौजूदा जो दौर चल रहा है, युद्ध का दौर चल रहा है, इस समय ईरान युद्ध, अमेरिका इजराइल का युद्ध, इधर कुछ दिन पहले भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया,
0: जी जी,
2: इसमें इतने तरह के AI वीडियो आए कि आपकी आंखों पे वो लगता है कि एकदम सही तरीके की हैं, लेकिन वो पूरी तरह फेक निकले।
0: जी जी जी।
2: आज ईरान युद्ध में भी इसी प्रकार के हो रहे हैं
0: जी।
2: इतना कभी कभार इतना नुकसान दिखाया जाता है, अमेरिका तक नुकसान दिखाया जाता है, लेकिन बाद में फैक्ट सब जब हम लोग चेक करते हैं या फैक्ट जो देखते हैं बाद में वो अलग हो जाता है, उसका खंडन हो जाता है। ऐसा दौर

0: जा रहा है, इसमें एक सजगता ही बहुत बड़ी जरूरी है
1: जी।
0: कैसे आप सजग रहेंगे ये भी बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि वो आपको सही लगता है, जो सही लिख रहा है आंखों को दिखता है। पहले लोग कहते थे आंखों जो दिखे दिखे वही सही है, आज जो आंखों को दिख रहा है वो गलत साबित हो
2: जाए। सही कह रहे हैं अनुराग जी आप,
0: ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है।
1: पहले तो बनता था आंखों देखी जो है वो ठीक है, ठीक बात है, मगर इसका एक ये भी है कि जिम्मेदार आदमी को अपने पास से ही उसकी स्कैनिंग करनी चाहिए।
2: yes.
0: बिल्कुल,
1: उसको कम से कम जो आजकल जो फॉरवर्डिंग का जो एक संस्कृति शुरू हो गई है उससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। yes. और जब कोई गंभीर आदमी फॉरवर्ड करता है तो दूसरा आदमी yes. मानता है कि
2: मानता
1: वो ठीक
0: है, ठीक है।
1: तो इसलिए उसको फॉरवर्डिंग को एक फैशन ना बना करके उसको एक तरह से बहुत जिम्मेदारी का कि कहीं इसके कितने प्रभाव होंगे। जैसे आपको एक उदाहरण छोटा सा मुझे आ गया कि जैसे एक रुपए का नोट एक रुपए का नहीं होता है, वो जितने लोगों के हाथ से गुजरता है उसकी उतनी क्रय शक्ति होती है।
0: बिल्कुल सही
2: सही है।
1: उसी प्रकार से जितने लोगों के पास ये जा रहा है उतने लोगों को ये प्रभावित कर रहा है, इसलिए कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोगों का जो व्यवहार हो वो जिम्मेदारी पूर्ण हो। और अंत में समाज एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है और जरा सा भी 19-20 होगा तो दिक्कत होगी, मगर टेक्नोलॉजी को भी हम लोगों को आत्मसात करना है।
2: yes.
1: मेरिट डीमेरिट रहेंगी।
0: बिल्कुल।
1: और ये मान के चलना कि जो टेक्नोलॉजी है उसके पीछे ह्यूमन ही है।
2: yes.
1: है ना। yeah. तो इसलिए ये जो एक भ्रम रहता है कि टेक्नोलॉजी कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं हावी हो जाए, मानव और टेक्नोलॉजी मिल के एक व्यवहार है। और उधर दो लोग हैं तब वो उस तरह का व्यवहार है, और इधर मानव है तो मानव का एक एक विराट स्वरूप शुरू से रहा है, उसी के द्वारा सब तय है। तो इसलिए आदमी को अपने जो मूल जो सिद्धांत हैं उन पर खरे उतरते हुए, खबरों को लेकर के चेक करते हुए और आगे किस तरह से जो उसकी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए आगे चलना है। वीरेन जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे?
2: एक बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि विश्व में 10-20% जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो ये लोग हैं जिन लोगों ने ये बनाया है AI, इससे जो है 80% जनता का दिमाग जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि अगर बच्चों से आज पूछिए कि 8x2 क्या होगा, तो अपना मोबाइल निकालेंगे और उस पे देखेंगे, हाँ 16, ऐसे नहीं बता पाएंगे। हमको तो सवैया और डेढ़े के पहाड़े पढ़ाए जाते थे
1: पहले के, अठे बारह डेढ़ अठे बारह
2: जी है, तब हम वो दिमाग में रहते थे। अब बच्चों को देखिए, कोई सवाल पूछिए बस वो अपना मोबाइल निकालेंगे, गूगल देखेंगे और बता देंगे आपको। तो ये जो परंपरा ये बड़ी खतरनाक है। दूसरी बात, एक बात और कहते हैं, ये सोशल मीडिया पे जो गेम्स आ रहे हैं बच्चों के, पबजी और फलाने जी, दे आर वेरी डेंजरस। और इससे ये लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, और कई बच्चों ने आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है इस पे। तो इसको किसी ना किसी तरह अंकुश लगाना और रोकना बहुत जरूरी
1: नहीं,
2: है।
1: ये बहुत बड़ा एक विषय है और इस पर लोग व्यक्तिगत भी, समाज को भी सोचना चाहिए और सरकार भी जिम्मेदारी निभा रही है। अनुराग जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे?
0: शरद जी, सबसे बड़ी बात, इस AI की चुनौतियों को निपटना बहुत जरूरी है। सरकार को भी सोचना होगा और सभी को सोचना होगा, संस्थानों को सोचना होगा। करना क्या होगा कि फैक्ट चेकिंग को बहुत मजबूत करना होगा, मीडिया संस्थानों में डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था करना होगा, तकनीक का सत्यापन, उसका उपयोग करना पड़ेगा। साथ ही सोशल प्लेटफॉर्म की कड़ी निगरानी का एक नियम बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों को इस पे जागरूक भी होना होगा, जो वो उनके पास सूचनाएं आती हैं उसको आगे भेजना है या नहीं भेजना है उस पे वो निर्णय कर ले, तो बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं।
1: अनुराग जी, आपकी बातें और आदरणीय वीरेन जी की बातें, दोनों लोगों की बातों से, आज की चर्चा से हमारे श्रोताओं को बहुत ज्यादा अपने सोचने समझने की शक्ति में एक विस्तार मिला होगा, और स्वयं उनको ही ये तय करना है कि कौन सी चीज हित की है, कौन सी चीज हित की नहीं है। तकनीक आपकी सहायक है, वो आपकी मार्गदर्शक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तकनीक के साथ बहुत अच्छे तरीके से, उसके साथ एक कदम से कदम मिलाते हुए सकारात्मक रूप से जीवन जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय है आपके लिए विकास समाचार और रोजगार अवसरों का। केंद्र सरकार ने सुरक्षित मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सुमन रोडमैप 2030 पर काम तेज किया है। इस पहल का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यानी UHI का विस्तार जारी है। इससे नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं तक एकीकृत डिजिटल माध्यम से पहुंच और अधिक आसान होगी। ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से AI आधारित ग्रामीण आंतरिक

ऑडिट पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये पहल योजनाओं की बेहतर निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन में सहायक होगी। जून माह में सामान्य से कम वर्षा दर्ज होने के कारण कृषि और जल संसाधनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संबंधित एजेंसियां आवश्यक प्रबंधन उपायों पर काम कर रही हैं। अब रोजगार समाचार। बैंक ऑफ इंडिया ने 779 क्रेडिट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने साइट इंजीनियर के पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्य अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थे आज के विकास समाचार और रोजगार समाचार। दोस्तों, हर नया दिन अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। कहीं कोई नई योजना किसी गांव की तस्वीर बदल रही होती है, कहीं नई तकनीक किसानों का सहारा बन रही होती है, तो कहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उनके सपनों को नई उड़ान दे रहे होते हैं। विकास केवल सरकारों की योजनाओं से नहीं, बल्कि जागरूक और सहभागी नागरिकों के सहयोग से भी गति पाता है। इसलिए अपने आसपास हो रहे सकारात्मक बदलावों से जुड़े रहिए, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने परिवार, समाज तथा देश की प्रगति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते रहिए। हो सकता है आज की कोई सूचना आपके जीवन या किसी और के भविष्य के लिए एक नई शुरुआत बन जाए। तो आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और हमारा पता है, नई उड़ान द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात तक, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
0: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
0: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
7: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
8: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। यूरोबैंक संस्थया ग्रीसतः भारतं प्रति यूपीआई आधारित धनप्रेषण सेवा समारब्धा। उपक्रमोयम् ऐतिहासिकः वर्तते इति वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सबलम् अवोचत्। पाकिस्तानस्य FATF संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यस्य निरीक्षणस्य आलोचनायाः अनन्तरं भारतेन एतां संस्थां प्रति स्वीय दृढ़ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। जनरल धीरज सेठः जनरल उपेन्द्र द्विवेदीतः भारतीय सेनायाः 31वें सेनाध्यक्षत्वेन पदभारं गृहीतवान्। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तायाः भविष्यं प्रति अनिश्चितता वर्तते, यतो हि तेहरान प्रशासनेन अमेरिका राष्ट्रपतिनः ट्रम्पस्य दोहा नगरे मेलनस्य विषयः दृढ़तापूर्वकं खण्डितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। अपि च क्रीडा वार्तासु, फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरेको देशेन नीदरलैंड दलं पराभूय राउंड ऑफ 16 इत्यत्र प्रवेशम् अवाप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ग्रीस देशस्य यूरो बैंक इति संस्थया भारते सीमापार धन प्रेषणाय यूपीआई आधारित सेवा समारब्धा, येन भारतीय ग्राहकाः अत्यल्पव्ययेन अतीव तीव्रगत्या धनं स्थानान्तरितं कर्तुं शक्नुवन्ति। अयम् अभिनव पदक्षेपः यूरोबैंक संस्थायाः भारतस्य नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यस्य च अन्ताराष्ट्रिय शाखया सह कृतेन रणनीतिक सहयोगेन सम्भवो जातः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रसृते संदेशे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः

0: अस्ति। अन्तिमा मतदात्री सूची अक्टूबर मासस्य सप्तदिनांके प्रकाशिता भविष्यति। कर्नाटकराज्ये अस्मिन् अभियाने राज्यस्य 31 निर्वाचन कार्यालयैः सह सम्बद्धाः 95,000+ BLO अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। मेघालयराज्ये च ईस्ट खासी हिल्स जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरणवालः सूचितवान् यत् BLO अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु 21,000 मतदानकेन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी 2 दिवसेषु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु संभाव्यन्ते। अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्ण तरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकरः न्यगादीत् यत् भारतेन 26,000+ देशैः सह 28 प्रवासन गतिशीलता सहभागिता सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। तेन अवैध प्रवासं शोषणात्मक प्रथाः कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेष रूपेण उपादिष्टम्। हूल दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य अन्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिंधो काहू, चंद भैरव, फुलो झानु इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ। मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीये द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्। अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं और अब ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य, केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना, तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में रामपुर भी शामिल है, जहां पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
2: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना, हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला

0: के लिए, अन्नदाता किसान के लिए जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
1: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं को भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं भेंट की। इनमें मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा निर्मित पीतल का कछुआ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों का बनाया हुआ पीतल का कछुआ सेशेल्स के राष्ट्रपति को भेंट करना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रदेश की स्थानीय शिल्प कला को नई और भव्य पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
2: वो लोकमाता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
1: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर जनपद में कल से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को

0: पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गाँव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक शत प्रतिशत स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, फिटनेस और भौतिक रूप से असुरक्षित दिखने वाले स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला लिया है। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कानपुर, उन्नाव, पीलीभीत, हमीरपुर, अंबेडकर नगर समेत आसपास के जनपदों में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आगामी दो दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
2: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले तीन दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: एक 1.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। इस समय शाम के 7:32 हुए हैं। ICC विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जानने के लिए आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: ये आकाशवाणी का केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज

0: नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं

0: वो पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 168,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से

0: the students to become agents of social transformation, saying education should go beyond securing employment and help strengthen society, culture, traditions and economic progress. She said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047.
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने के खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदायशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने मजमू हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाति सिलसिले को ख़त्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जामे मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए पीएम गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन 2 अहम मौजूआत से मुताबिकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्कीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नज़दीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मौशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यह बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए।
1: बस 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित

0: व्यवहारिक शोषण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करें और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों के बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवेज ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरसा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमदोरफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकलो हमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। आज वडोदरा में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरून मुल्क दिफाई पैदावार 2014 में तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए थी, जो नुमाया इजाफे के साथ इस वक्त 1,78,000 करोड़ रुपए मालियत की हो गई है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतालिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पहले दिन वोटरों को 1,68,200 से ज्यादा फॉर्म तकसीम किए गए। 7,600 से ज्यादा इंदराज के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। दिल्ली में 13,033 पोलिंग बूथ्स हैं जो 1,45,10,298 वोटरों का अहाता करते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज इंदराज का अपना फॉर्म दाखिल किया और कौमी राजधानी के सभी अहल वोटरों से नजरसानी के जारी अमल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर अपने फॉर्म दुरुस्त तरीके से भरें और उन्हें अपने मुतालिका बीएलओस के हवाले कर दें। उन्होंने इस मुहिम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सही और दुरुस्त वोटर फहरिस्त एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद होती है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीक़ाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी हैं। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तस्ना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तस्ना को आज तक के लिए मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आर्जी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही

रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तवक्को है कि इस रियायत से उन सनअतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल, खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती हैं। इनमें प्लास्टिक पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवासाजी, केमिकल्स, ऑटोमेटिव पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग के दीगर शोबे शामिल हैं। आज हुल बगावत के शुजातमंदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हुल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में खसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इस मौके पर साहिबगंज के पंचकतिया और भोगनादी में यादगारी मकाम पर हुल इनकलाब के शहीदों को हजारों लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुल दिवस कबायली बरादरियों के गैर मामूली हौसले और गैर मुतजलजल जज्बे की एक मजबूत अलामत है जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। सियाहत की वजारत ने मुल्क के सियाहती मकामात के डिजिटल वसीले से फरोग को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जरिए भारत के सकाफती मकामात की शान शौकत को पूरी दुनिया के सामने मुतासर कुन अंदाज में पेश किया जा सकता है। शराकत दारी के तहत गूगल इंडिया आलमी सफरी रुझानात, मुसाफिरों के रवैये और शवाहिद पर मबनी सियाहती तरक्की में फरोग के लिए डिजिटल तरीक़ेकार के जरिए मालूमात फराहम करेगा। जनरल धीरज सेठ ने आज फौजी अमले के 31वें सरबरा की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह इस ओहदे पर फाइज हुए हैं जो चार दहाई से ज्यादा मुल्क की गरांकदर खिदमात के बाद अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हुए हैं। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के साबिक तालिब इल्म हैं और उन्हें दिसंबर 1986 में फौजी कोर में शामिल किया गया था। जनाब रवि अग्रवाल को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड का एक मरतबा फिर चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उनकी मुद्दत कार कल से 31 दिसंबर 2026 या आइंदा अहकामात जो भी पहले हों तक होगी। तकरूरियों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने उनकी दोबारा तकरूरी को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मदरसा तालीमी निज़ाम में कल से एक बड़ी तब्दीली का निफाज होगा। नए इंतजाम के तहत उत्तराखंड मदरसा तालीमी बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत रियासत के सभी अकलियती तालीमी इदारों का इंतजाम रियासत के तहत होगा। रियासती सरकार ने उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारों के एक्ट के तहत नया निज़ाम मुतारिफ किया है जिसके तहत उत्तराखंड रियासती तालीमी अथॉरिटी अकलियती तालीमी इदारों को तस्लीम करने, उनके कामकाज की निगरानी करने और तालीमी मेयार को यकीनी बनाने की जिम्मेदार होगी। यह नया निजाम मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी बिरादरियों के तालीमी इदारों का अहाता करेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस अदालती हुक्म को कलअदम करार दे दिया है जिसका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत के हक को खत्म करना था। अदालत ने इस बात की तौसीख की कि अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर शख्स खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करता है। मुकदमे में अदालत ने कहा कि पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करने का हुक्म अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम के खिलाफ है। अक्वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने पक्तिका, पक्तिया और कुनार सूबों में पाकिस्तान की जानिब से हवाई हमले किए जाने की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में औरतों व बच्चों समेत 36 शहरी हलाक और 160 जख्मी हुए हैं। मिशन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हदूद में भी फौजी हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की मुबैना खिलाफ वर्जियों की पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा है। अफगान मिशन के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। जनूब मगरबी मानसून के आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान शिमाली बहर अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। IMD ने जुलाई के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मामूल से कम बारिश की भी पेशगोई की है। फीफा आलमी कप में मराकश और पैराग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मराकश ने सनसनीखेज तौर पर मैच 1-1 से बराबरी के बाद नीदरलैंड्स को 2-3 गोल से हरा दिया। अमेरिका के बोस्टन में पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से 3-4 गोल से हारने के बाद जर्मनी हैरानकुन तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। कल देर रात अमरीका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 से जीत हासिल करके ब्राजील ने भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। आज रात अमरीका के टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 10:30 से खेला जाएगा। एक दूसरे मुकाबले में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। यह मैच

0: भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंजिबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादले ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम करें और मुल्क की तामीर में ताउन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने की खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। ICC विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जानने के लिए आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

हम सफर हम राज हों ता कयामत

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग रागेश्री में अलका सिंह का बांसुरी वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग रागेश्री में अलका सिंह का बांसुरी वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16

प्रातः 5:52 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।